0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ मिर्ची इंस्टा प्यार. और आज मैं आपको शो के शुरुआत में ही बताना चाहती हूँ कि मेरी अरोमा थेरेपी के साथ रिलेशनशिप कब शुरू हुआ था. सो आई एक्चुअली फेल इन लव विद अरोमा थेरेपी जब मैं अपने दो तीन पुराने एक्स बॉयफ्रेंड्स वाले एक्स बॉयफ्रेंड को डेट कर रही थी. एंड बाय द टाइम आर रिलेशनशिप केम टू एन एंड ना, दैट्स व्हेन आई एक्चुअली डिस्कवर्ड कि क्लोरोफॉर्म कितना अमेजिंग होगा इस बंदे के लिए. इसके मुंह पर डालो और बंद कर दो इसकी कॉन्शियसनेस को फॉर अ कपल ऑफ आवर्स. ही हैड स्टार्टेड गेटिंग ऑन माई नर्व्स सो मच एंड दैट्स ऑनेस्टली व्हेन आई डिस्कवर्ड अरोमा थेरेपी. अब आप मुझे बताओ कि जब आप अपने एक्स की फोटो देखते हो क्या चीज सबसे पहले आपको याद आती है, टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल क्या है? हिट मी विद इट, ड्रॉ हिट मी विद इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड माई ऑनेस्ट सजेशन टू यू.

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
0: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरो डायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
1: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: कुत्ते के चाटे हुए सैंडविचेस अपनी गर्लफ्रेंड को खिलाने वाले दरिंदे, अगर आप ऐसा कन्फेशन करना चाहते हो मेरे साथ, आई एम नॉट गोना स्टॉप यू बिकॉज टाइम हो गया है फॉर
2: द सीक्रेट बॉक्स,
1: व्हिच काइंड ऑफ मींस कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी मतलब द डिजायर टू गेट रोशिफाइड है, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, आई बी हैप्पी टू डू इट फॉर यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है RochIE. यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टा या FB. एंड मेरे साथ अभी लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो नॉटी गर्ल.
3: हेलो, हाय,
1: हाउ आर यू?
3: आई एम गुड.
1: झूठी, यू आर बेटर देन यू आर. वो सब छोड़ यार, कन्फेशन सुनने पहले.
3: Yeah, I really need to tell you.
1: Okay.
3: So my boyfriend and I, we just saw this weird position on the internet where I had to be on the ground, half on the ground and half on the bed, and he had to be behind me. We were like, this looks nice. We'll try it.
1: Okay.
3: Huh. Now the thing is, they did not teach us other aspects of that position. It just looked like that, and we didn't understand it either. So, like while we were doing it, it was good. But then we became too passionate, and I sort of fell. So when I fell, I bruised my back a little bit. But my boyfriend, he fractured his arm.
1: Oh, that's terrible.
3: Yeah. I know. And the thing is, we can't tell people what happened because how do we tell?
1: मुझे तो बड़े आराम से आपने बता दिया कि हमने कहीं पर एक नई पोजीशन देखी थी, फिर हमने ट्राई की और मैं गिर गई और वो गिर गया और मेरी पीट गई उसका हाथ. मुझे तो बड़े प्यार से बता दिया था आपने.
3: बट दैट्स
1: आई थिंक दैट्स आल्सो लाइक कूडोस टू मी ना, कि यूर लाइक कि रेडियो पे तो है, मैं मिस्ट्री कॉलर हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ एंड आई गेट अवे विद इट. And how did you break, bruise your back same day? कमरे में गए तो ठीक थे और कमरे से बाहर निकले तो ये ऐसे टूटे फूटे कैसे हैं?
3: Exactly.
1: तो तुम बोला कि तुम सीढ़ियों से गिर गए थे? हाँ. बोला कि हम सीढ़ियों में किस कर रहे थे और सीढ़ियों में किस करते करते मेरा पैर फिसल गया, तो मैं आई लैंडेड ऑन माई आर्म, और या ही लैंडेड ऑन हिज आर्म, तो उसका बाजू टूट गया और मैं पीठ पे गिर गई थी.
3: दैट वी कैन डू.
1: मुझे इसके कितने पैसे मिलेंगे? यू आर लाइक, मेरी हंसी लगे काफी है, इट्स ओके, यू कैन रोशिफाई मी.

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानी।
1: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
5: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
6: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
6: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
6: अब मिर्ची खा।
8: Radio Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: डेटिंग के वास्ट यूनिवर्स में अगर एक लेजिट डील ब्रेकर होना चाहिए फॉर एवरीबडी वो ये है व्हेन पीपल डोंट रियली रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट आप क्या काम करते हो. आई जस्ट रिसेंटली स्पोक टू समबडी एंड ही वाज अ कॉलर ऑन द शो एंड ही सेड कि यार मैं एक फोटोग्राफर हूँ लेकिन मेरी बंदी हैज अ प्रॉब्लम विद द फैक्ट कि फोटोग्राफर ज्यादा पैसे नहीं कमाते. तो शी इज सेइंग कि कोई स्टेबल जॉब ढूंढ ले नहीं तो मैं तेरे साथ ब्रेकअप कर लूंगी. नाउ आई थिंक दैट्स रियली डिसरिस्पेक्टफुल राइट. जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं ए द लव हैज टू बी अनकंडीशनल. बी मतलब ये कैसा प्यार है जब आप सामने वाले इंसान का पैशन ही नहीं समझ रहे हो. आई रिमेम्बर जब मैं अपने बुक राइटिंग फेज में थी एंड आई हैव रिटन टू बुक्स थैंक्स तो मेरा देन बॉयफ्रेंड वाज सो इनकरेजिंग. अगर उसने मुझे डिस्करेज किया होता कि बुक राइटिंग की दुनिया में क्या रखा है, इसमें पैसे नहीं मिलते, रॉयल्टी में कितने ही पैसे मिल जाएंगे तुझे, आई थिंक कि मेरी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इवॉल्विंग स्टेज नहीं मुकम्मल होता इफ माई बॉयफ्रेंड वॉज नॉट सपोर्टिव ऑफ व्हाट आई डू. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर कोई आपकी जिंदगी में है हु इज नॉट ओके विद योर पैशंस, हु इज नॉट ओके विद द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू आर बाय एंड लार्ज, दैट इज अ डील ब्रेकर. इसके बारे में सोचना नहीं है. जैसे ही एक इंसान आपकी ये बाउंड्री क्रॉस कर दे वेयर दे हैव अ प्रॉब्लम विद what your passion in life is, just ask them to leave. You will thank me for this for the rest of your life. Aur thank you bolne ke liye, aap mujhe dhoond sakte ho Insta par ya FB par. Mera naam hai Mirchi Roshi. Naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. So go ahead and be the smart person that you are and kahin mat jana jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ हो बादशाह।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपके बॉयफ्रेंड के आईक्यू से ज्यादा बड़ी आपकी ज्वेलरी होनी चाहिए दिस विंटर सीजन टू कम. ये है फैशनिस्टास की प्रेडिक्शन फॉर 2026 के गुड बाय मंथ्स, यानी कि अब जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बचे हैं, इसमें जो ज्वेलरी है ना, बड़ी बड़ी चंकी चंकी, मतलब आप इमेजिन करो आंखें बंद करके अपने पार्टनर का सर. Now you could be a boy or a girl, it doesn't matter. Everyone's into jewelry these days. तो जितना बड़ा आपका पार्टनर का सर है उससे बड़ी आपकी नेक पीस होनी चाहिए या आपका ब्रेसलेट होना चाहिए, एंड देन इट्स कंसिडर्ड ऑन पॉइंट ज्वेलरी फॉर दिस सीजन. अब सोचो आपके पास ऐसा कोई पीस है या नहीं. और मैं सोच रही हूँ जेन्युइनली, इफ आई कुड रियली वेयर अ ह्यूमन बीइंग एज अ ज्वेलरी ओवर मी, इट वुड बी राखी सावंत. क्या चीज़ें बोलती है भाई वो बंदी. शी इज लाइक, आवाज नीचे और 20 कदम पीछे. दिस शुड बी माई मंत्रा फॉर लाइक डेटिंग एप्स के बंदे, क्योंकि जितने भी बंदों को मैं डेटिंग एप्स से मिलती हूँ ना, आई फील लाइक टेलिंग देम दिस कि भाई 20 कदम पीछे रह ले, तो जितना अच्छा फोटोज में लगता है उतना भद्दी रियल लाइफ में लगता है. दैट सेड, आपका क्या ओपिनियन है अबाउट दीज बिग ज्वेलरी पीसेज एंड अबाउट गाइज हुज ईगो इज बिगर देन दीज ज्वेलरी पीसेज? हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, लेट्स टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशनी, नाम की स्पेलिंग है RochiE. सो गो अहेड, जानू मानू, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
2: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: 13 तरह के लड़के होते हैं इस दुनिया में और 24 तरह के उनके टंटे होते हैं, बट द वंस दैट आई लाइक द मोस्ट आर द शाय गाइज, एंड वन सच शाय गाय हैज सेंट मी अ मैसेज एंड आस्क्ड मी टू कॉल हिम. उसे अपने होने वाला प्यार डिस्कस करना है. लेकिन अगर आपकी भी जिंदगी में कोई ऐसा कष्ट है मित्रों, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर, वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो व्हाइल यू सेंड मी योर नंबर, आई एम गोना कॉल सुयश. हेलो.
2: हाय रोशी,
1: हाउ आर यू?
2: मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए.
1: आप कह रहे थे कि आपके जीवन में बड़े कष्ट है, मैं पूछ लेती हूँ.
2: एक्चुअली कष्ट ये है कि अभी मैंने जॉब स्विच करी है.
1: हाँ.
2: मुझे हो गए करीब 6 महीने, और जो हमारा ग्रुप था न्यू जॉइनर्स का, 4-5 लोग थे उसमें. उसमें एक लड़की है, आई डोंट नो, बट बहुत अच्छी लगती है मुझे. और हम एक टीम में तो नहीं है साथ में, पर हम एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. हमारी डेली बात भी नहीं होती, हमारी होती है करीब 7-8 में कभी एक बार होती है. पर I don't know कि मैं उसे बताऊं कि ना बताऊं, क्या करूं.
1: आपको पता है कि वो सिंगल है कि नहीं?
2: नहीं, हमारी कभी इस बारे में भी बात नहीं है.
1: तो मेरा सजेशन ये कि आप पहले फिगर आउट करो कि वो सिंगल है कि नहीं, क्योंकि अगर उसका बॉयफ्रेंड है तो थोड़ा अजीब लगेगा ना कि भाई बंदा प्रपोज कर रहा है और लड़की का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड निकला, राइट? सो पहले फिगर आउट करो कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू कि वो सिंगल है या नहीं, या इंस्टा या FB पर ट्राई एंड फिगर आउट वो किस तरह की फोटोज डाल रही है. एक बार आपको पता चलता है कि वो सिंगल है और अगर आप दोनों की बातचीत अच्छी हो रही है, आप लोग अच्छे दोस्त बन चुके हो.
2: हमारी बातचीत जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं काफी डीप कन्वर्सेशन ही होती है.
1: उसमें तो हो सकता है वो सिंगल हो, बिकॉज अगर हम एक लड़के से एक बहुत ही डीप मीनिंगफुल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, चांसेस हैं कि हम एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं इफ अ वुमन इज डूइंग दैट विद अ गाय. तो मुझे आपके चांसेस ब्राइट लग रहे हैं. बस एक बार फिगर आउट कर लो वो सिंगल है कि नहीं, और उसके बाद अच्छा सा मौका देख के और बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट में, ठीक है, जिस दिन स्ट्रेस ना हो रहा हो ना उसे ना आपको, बस आजू बाजू मत टेक आई लव यू मत बोलना. मैं सिर्फ गाने का कोटेशन दे रही हूँ आपको. But what I'm trying to say is that tell her that you like her, you want to spend more time with her. Be honest, be upfront. लड़कियों को authentic और honest लड़के बहुत अच्छे लगते हैं.
2: ठीक है, but मुझे ऐसा लालच नहीं है कि वो हाँ ही बोले या साथ रहे. It's just हम लोग friends बने रहे हैं, हम चाहते नहीं कि हमारी दोस्ती में कुछ भी.
1: यार, I feel like कि आप इतने you're such a simple person और आपका प्यार भी उतना ही simple होगा, I'm guessing. और अगर वो भी एक simple लड़की है who has deep meaningful conversations with you, then the two of you should give a relationship a shot. Why not? नहीं, मान लीजिए there is a guy in her life, फिर वो attention कम हो जाए.

सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आप हमेशा अपनी नानी की होम रेमेडीज बताते हो, तो ये भी बता दो कि बदलते हुए मौसम में यार मेरे बाल ना काफ़ी झड़ रहे हैं और मेरी लाइक स्कैल्प काफ़ी ड्राई हो रही है और मुझे डेट पर जाना है एंड आई डोंट वांट कि डेट पर टेबल पे मेरे बाल झड़ रहे हों, क्या करूँ मैं इसके लिए?
2: रोशी के डीएम से।
1: यू नो आई थिंक कि स्लोली स्लोली शो पे मुझे नानी को लाना पड़ेगा, बिकॉज जैसे आप क्वेश्चन भेजते हो ना कि होम रेमेडी बता दो, मुझे लगता है नानी शुड बी माई कोजॉग। बट नानी के पास एक्चुअली काफ़ी रेमेडीज होती है, स्पेशली फॉर ब्यूटी थिंगीज एंड हैक्स फॉर होम। नानी के बाल काफ़ी घने हैं कॉन्ट्ररी टू माई हेयर, एंड दैट्स प्रॉब्ली बिकॉज जब से मुझे याद है ना वेब, मेरी नानी एक बनाना और कर्ड का मास्क लगाती है। सो उसमें वो थोड़ा सा दही डालती है और बनाना मैश करके डालती है, उसे अपने स्कैल्प पे लगाती है 15 मिनट के लिए, एंड लाइक हर 3 दिन में नानी ऐसा करती थी। नानी की स्कैल्प में कभी डैंड्रफ नहीं होती थी एंड हर हेयर वॉज सो गॉर्जियस ऑल द टाइम। इनफैक्ट अभी तक नानी का लाइक इंटायर स्कैल्प एंड हेयर सिचुएशन इज रियली ऑन पॉइंट। ऑल्सो आप ये ट्राई कर सकते हो कि अगर आप बाल अपना हेयर ग्रोथ एक्सेलरेट करना चाहते हो, नानी हर एक को बना के देती थी बनाना और हनी का हेयर मास्क। तो वो बनाना लेती थी उसका पल्प और उसमें वो हनी डालती थी, लोगों को एक ऐसे शीशी में बंद करके देती थी और कहती थी कि इसे 15 मिनट के लिए लगाना, उसके बाद ठंडे पानी से धो लेना और तुम्हारे स्कैल्प में लाइक न्यू हेयर ग्रोथ विल इमर्ज। सो आप इन दोनों में से कुछ भी ट्राई कर सकते हो एंड बनानाज आर लाइक सो फन एंड ऑनेस्टली लाइक नानी ना ऐसे होम रेमेडीज बनाती थी एंड दे वर ऑलवेज सुपर हेल्पफुल। इन दोनों में से वट एवर वर्क्स फॉर यू प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन टेल नानी और नानी खुश हो जाएगी। एंड अगर आप भी ऐसे कोई हैक या ब्यूटी क्वेश्चंस पूछना चाहते हो नानी से, आई विल बी हैप्पी टू आस्क नानी टू हेल्प यू। फॉर दैट ऑल्सो यू विल हैव टू गेट इन टच विद मी। अनफॉर्चुनेटली मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE। सो हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड व्हाटएवर यू डू, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची एंड आई विल कैच यू ऑन द अदर साइड।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Honest confession time. लोगों को यूजुअली माता आती है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ मुझे पिता आते हैं, क्योंकि अब मैंने बिल्कुल अपने पापा की तरह बात करनी शुरू कर दी है. दिस इज ऑल्सो टूवर्ड्स द मैन आई मीट ऑन डेटिंग एप्स. ठीक है, अगर वो मुझे इरिटेट एएफ कर रहे होते हैं ना, आई जस्ट लुक एट देम एंड से ऐसी बातें मत कर यार, जितनी तेरी उम्र नहीं है उतना मेरा तजुर्बा है. एंड ही इज लाइक रियली, ऐसा तो नहीं लगता आपको देख के मैडम. एंड आई एम लाइक यार मैं पापा की तरह क्यों बातें कर रही हूँ. बट आई हैव रियलाइज दैट द ओल्डर आई एम गेटिंग the more I'm behaving like my dad. And honestly speaking, just between you and I, बड़े मज़े आते हैं यार. मेरे डैड एक निहायत ही बदतमीज़ किस्म के इंसान हैं, और अब मैं जितनी ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करती हूँ, men seem to find it even more attractive. अगर आप एक आदमी हो तो मुझे ये बता दो कि आपको बदतमीज़ लड़कियाँ पसंद क्यों हैं, और अगर आप एक लड़की हो तो मुझे ये बता दो कि आपको माता आती है कि पिता आते हैं. ऑन दैट नोट, यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड वाइल यू हिट मी अप, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: कुत्ते के चाटे हुए सैंडविचेस अपनी गर्लफ्रेंड को खिलाने वाले दरिंदे, अगर आप ऐसा कन्फेशन करना चाहते हो मेरे साथ, आई एम नॉट गोना स्टॉप यू बिकॉज टाइम हो गया है फॉर
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: Which kind of means कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी मतलब the desire to get roshified है, hit me up on Insta या FB, I'll be happy to do it for you. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. You can find me on Insta या FB, and मेरे साथ अभी लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. Hello naughty girl.
3: Hello, hi.
1: How are you?
3: I'm good.
1: झूठी, यू आर बेटर देन यू आर. वो सब छोड़ यार, कन्फेशन सुनने पहले.
3: I really need to tell you. Okay.
1: So
3: my boyfriend and I, we just saw this weird position on the internet where I had to be on the ground, half on the ground and half on the bed, and he had to be behind me. We were like, this looks nice. We'll try it.
1: Okay.
3: Now the thing is, they did not teach us other aspects of that position. It just looked like that, and we didn't understand it either. So, like while we were doing it, it was good. But then we became too passionate, and I sort of fell. So when I fell, I bruised my back a little bit. But my boyfriend, he fractured his arm.
1: Oh, that's terrible.
3: Yeah. I know. And the thing is, we can't tell people what happened because there's, how do we tell?
1: मुझे तो बड़े आराम से आपने बता दिया कि हमने कहीं पर एक नई पोजीशन देखी थी, फिर हमने ट्राई की और मैं गिर गई और वो गिर गया और मेरी पीट गई उसका हाथ. मुझे तो बड़े प्यार से बता दिया था आपने.
3: बट
1: दैट्स आई थिंक दैट्स आल्सो लाइक कूडोस टू मी ना, कि यू आर लाइक रेडियो पे तो है, मैं मिस्ट्री कॉलर हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ एंड आई विल गेट अवे विद इट.
3: आई एम सो ग्लैड आई टोल्ड यू बिकॉज़ आई एम थिंकिंग ऑफ अ लाइक, हाउ डिड ही ब्रेक हिज आर्म, आई डोंट नो.
1: And how did you break, bruise your back same day? कमरे में गए तो ठीक थे और कमरे से बाहर निकले तो ये ऐसे टूटे फूटे कैसे हैं?
3: Exactly. And we have flatmates.
1: तो तुम बोलना कि तुम सीढ़ियों से गिर गए थे? हाँ. बोलना कि हम सीढ़ियों में किस कर रहे थे और सीढ़ियों में किस करते करते मेरा पैर फिसल गया, तो मैं I landed on my arm, और या ही landed on his arm, तो उसका बाजू टूट गया और मैं पीठ पे गिर गई थी.
3: That we can do.
1: मुझे इसके कितने पैसे मिलेंगे? मेरी हंसी लगे काफी है. इट्स ओके, यू कैन रोशिफाई मी वाइल यू आर एट इट, है ना?
3: हाँ, प्लीज रोशिफाई मी.
1: ओके ओके, रोशिफाई मी, देयर यू गो,
4: यू've बीन रोशिफाइड.
1: बट बेब, आपकी कन्फेशन इतनी मस्त थी ना, और अगर आप ऐसी हर चीज में इतनी जल्दी करते हो कि मतलब कोई वो नहीं है, फॉरवर्ड नहीं है, सीधा ही इनटू द मैडनेस, तभी शायद आप गिरे होंगे. थोड़ा प्रेप टाइम देना चाहिए था ना. ऑल द बेस्ट टू यू. आई होप कि अगली बार आपको मुझे फोन करके ये कन्फेशन बताने की जरूरत ना पड़े, और अगर मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही कोई कन्फेशन है, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू वट एवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

जिसके भी बस की हो आके पकड़ ले, इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक की नहीं हो रहा। बादशाह नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो बैडी बोलती है, गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

मुट्ठी में गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शार्क कैसे तुझे तेरे बस का लगा, ना मुझे ऐसे मस का लगा। रही ना किसी काम धाम की, जब से लड़की को चस्का लगा।

0: तेरा क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: वो अमेजिंग फीलिंग जो आपको आती है ना, जब आप 6 महीने तक अपने क्रश को चेज कर रहे होते हो उसे ये कहने के लिए कि मेरे साथ कॉफ़ी पर चलेगी, और 6 महीने के बाद आपका क्रश फाइनली आपको कहता है कि हाँ ऑफकोर्स चल सकते हैं, काम के बाद वाई डोंट यू टेक मी आउट फॉर कॉफ़ी, उसके बाद मुझे घर ड्रॉप कर देना. हमारे ऑफिस में कुछ ऐसा ही हो रहा था. 6 महीने से देख रही थी अभिषेक को कोशिश करते हुए, इस बंदी पर लाइन मारते हुए कि कभी ना कभी तो उसके मुँह से निकलेगा कि यार क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पर चलेंगी, और कभी ना कभी शायद वो हाँ बोल देगी. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. तो मैंने अभिषेक को साइड पर लेकर गई एंड आई टोल्ड हिम कि यार अगर तू उसे कॉफ़ी पर लेकर जा रहा है ना, तो एक चीज़ पक्का करना, मेक श्योर कि अगर वो चाय पी रही है या कॉफ़ी पी रही है, दोनों की दोनों चीज़ें गर्म होनी चाहिए. ही सेड मैं समझा नहीं क्यों. एंड देन आई टोल्ड हिम कि रिसर्च के हिसाब से अगर आप किसी इंसान को एक गर्म बेवरेज पिलाते हो या कुछ गर्म खिलाते हो, उसकी साइकोलॉजी ये होती है कि वो आपके सिस्टम को वार्म कर देता है, एंड योर चांसेज ऑफ अप्रिशिएटिंग द अदर पर्सन एंड योर चांसेज ऑफ सेइंग येस एज अपोज टू नो बढ़ जाते हैं. यानी कि अगर तू उसे गर्म कॉफ़ी पिलाएगा और उसके बाद उसे कहेगा दैट I kind of really like you. Don't you think हमें थोड़ा सा टाइम इकट्ठे स्पेंड कर लेना चाहिए, चांसेस हैं कि वो हाँ बोल देगी. वो इतना खुश हो गया दैट ही टोल्ड मी, रोशी मैं पूरे मेन्यू में जो कोल्ड वाले बेवरेजेस हैं ना, वो मेन्यू का पेज ही आगे कर दूंगा, वो सिर्फ देखेगी हॉट बेवरेजेस. एंड आई वाज लाइक यार स्मार्ट तो तू बहुत है और प्यार तो इसे बहुत करता है. आई जस्ट होप योर डेट गोज ऑफ वेल एंड माई फिंगर्स आर क्रॉस्ड फॉर अभिषेक. लेकिन अगर आप भी अपनी डेट को लेकर जा रहे हो बाहर फॉर द फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम, मेक श्योर दैट यू आर फीलिंग देम समथिंग गर्म, बिकॉज उसके फायदे बहुत सारे हैं. एंड वंस इट वर्क्स फॉर यू, मुझे थैंक यू बोलना मत भूलना इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड यू नो व्हाट आई ऑलवेज से, जिसके पास लव है उसके पास सब है, एंड आई लव यू लोड्स.

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

TDLJ ले लो, मोहब्बतें ले लो, रब ने बना दी जोड़ी ले लो, ये तीनों और भी कई सारी हिट हिट फिल्में, धूम ले लो, वॉर टू ले लो, ऑल ऑफ देम, ये सब बनाने वाले थे आदि चोपड़ा यानी आदित्य चोपड़ा। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने ये फिल्म मेकिंग जो थी ये सीखी कौन सी फिल्म से, कौन सी फिल्म के साथ उन्होंने सेट पे पहली बार कदम रखा था, आज उसी फिल्म को लेकर के आई हूँ। यश चोपड़ा साहब बना रहे थे चांदनी, ओ मेरी चांदनी। Well, इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए उन्होंने अपने बेटे को असिस्टेंट डायरेक्टर यानी आदि चोपड़ा को असिस्टेंट डायरेक्टर रखा था और बस इसी फिल्म की बारीकियों को सीख करके आदित्य चोपड़ा ने आगे आने वाली सारी फिल्में बनाई। चांदनी के नाम बहुत सारे किस्से हैं, सब पता करके लाई हूँ, एक एक करके शेयर करूंगी। अभी जल्दी किस बात की है, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे सुनो होता है क्या। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा बैक टू बैक गाना सुनेगा
2: on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

यश चोपड़ा साहब ने तो अपनी चांदनी रेखा जी में देखी थी, पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। एंड आज जिस फिल्म की बातें हो रही हैं वो है रंग भरे बादल में तेरे नैनों के काजल में मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी। सो यश चोपड़ा साहब ने जब ये फिल्म बनाई ना, वो चाहते थे कि चांदनी के रोल में उमराव जान, मेरा मतलब है कि रेखा जी आए। एंड ऑल्सो बिकॉज चांदनी नाम काफ़ी फेमस हो चुका था लोगों के बीच में। पूछो क्यों? क्योंकि इस फिल्म से पहले यश चोपड़ा साहब ने बनाई थी सिलसिला, और सिलसिला में चांदनी बनी थी रेखा जी, यानी कि उनका नाम, उनके कैरेक्टर का नाम चांदनी था। लेकिन रेखा जी ने ना अनएक्सपेक्टेडली, यश साहब को कोई मना नहीं करता था, उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया। क्यों किया? इंटरेस्टिंग स्टोरी, अभी बताऊंगी आपको। गाने सुनकर के वापस आओ। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

क्योंकि रेखा नहीं चाहती थी कि चांदनी की कोई भी याद उनके पास अब रह जाए। पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट श्रीदेवी वाली चांदनी। अब हुआ ये कि यश चोपड़ा साहब चाहते थे कि रेखा जी उनकी फिल्म की चांदनी बने, और ऐसा इसलिए भी बिकॉज सिलसिला जब उन्होंने बनाई थी ना, जो कि चांदनी से पहले थी, उसमें रेखा जी ने चांदनी का कैरेक्टर प्ले किया था। एंड जब यश साहब उनके पास ये रोल का ऑफर लेकर के गए, He never expected कि रेखा जी इस इतने मीठी रोल से, इतने खूबसूरत रोल से मना कर देंगे, क्योंकि इस रोल में बहुत सारे शेड्स थे। रेखा जी ने पता है क्यों मना किया? She said कि मुझे ना जब मैंने सिलसिला करी तो बहुत ही मेरी फीलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि टॉर्चर हुआ, और वो काफ़ी ड्रेनिंग था मुझे सिलसिला को फिर से रिपीट नहीं करना। एंड दैट्स व्हाई शी डिनाइड कि सिलसिला से रिलेटेड अगर एक कैरेक्टर का नाम भी चांदनी रिपीट हो रहा है तो वो उस यादों में नहीं जाना चाहती थी। ऑलराइट, फिर श्रीदेवी कैसे आई बताऊंगी आपको। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

माधुरी दीक्षित सारी उस टाइम की बड़ी एक्ट्रेसेस ने ये रोल करने से मना कर दिया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, चांदनी फिल्म की बात हो रही है। कौन सा रोल मना कर दिया? देविका का रोल। देविका विनोद खन्ना की वाइफ दिखाई जाती है जो कुछ देर के लिए आती है, एक आध गाने में आती है, एंड दैट्स इट। वेल ऑफकोर्स उस टाइम की सारी एक्ट्रेसेस को लगा कि इतना बड़ा रोल, इतना मीठी रोल जो है चांदनी का, वो तो श्रीदेवी को जा रहा है। अब श्रीदेवी के सामने हम में से कौन टिकेगा, इसलिए मोस्ट ऑफ देम डिनाइड डूइंग द रोल। फिर आई जूही चावला। जूही चावला एकदम फ्रेश फेस थी उस समय, एंड शी वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू यू नो बिग फिल्म, शी वॉज ट्राइंग टू वर्क विद बिग डायरेक्टर्स। तो जैसे ही यश साहब ने ये न्यू कमर जूही चावला को रिक्वेस्ट किया, वो फौरन मान गई, एंड दिस वर्कड आउट इन हर फेवर। क्योंकि इसके बाद एक अच्छा सा मेकओवर दे करके यश साहब ने लॉन्च की अपनी जूही चावला को इन द फिल्म डॉर। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ज्योमेट्रिक प्रिंस इन्होंने सिलसिला में भी पहने पुरानी जीन्स पे। हाय मैं हूँ श्रेया और आज ना उस जमाने की हीरोइंस के लाए हुए फैशन स्टेटमेंट्स जो हम आज तक इस जमाने में फॉलो करते हैं ना वो ढूंढ करके लाई हूँ मैं। सो रेखा जी ना ज्योमेट्रिक प्रिंट्स पहनती थी और जंप सूट्स जो आजकल हमें बहुत पसंद है एक्चुअली में सबसे पहले रेखा जी ने पहने थे। खूबसूरत फिल्म ले लो सिलसिला ले लो एंड सो मैनी ऑफ देम भाई शी वॉज नोन फॉर हर बोल्ड लुक्स और फिर उनकी रेड चटक लिपस्टिक ओहो। वैसे रेखा जी की बिंदी भी ना बहुत पॉपुलर हुई थी वो ब्लैक वाली भी और रेड वाली भी जो उन्होंने सिलसिला में लगाई है। आज ना ऐसी वो सारी हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट्स जो कि पूरे इंडिया में रेज बन गए थे हर लड़की फॉलो कर रही थी हर लड़की जो कॉलेज गोअर थी हर लड़की जो हॉस्टल में रहती थी हर लड़की। वेल आज पुरानी जीन्स पे अगला किसका बताऊंगी हाउ अबाउट जीना तमान। तो वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गोविंदा ने इस रोल से मना किया और उसके बाद अनिल कपूर ने इस रोल से मना किया, और दोनों का रीजन पता है क्या था? उनको व्हील चेयर पे नहीं बैठना था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड यश चोपड़ा साहब को अपने रोहित को तो व्हील चेयर पे बैठाना ही था। वेल फाइनली उस रोल को हाँ करी थी ऋषि कपूर ने। पुरानी जीन्स पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी, इसी फिल्म के गाने भी हो रहे हैं। तो यश चोपड़ा साहब ने सबसे पहले अनिल कपूर को ये रोल ऑफर किया था ऑपोजिट श्रीदेवी, ही सेड नो। उसके बाद उन्होंने ऑफर किया था ये रोल गोविंदा जी को, ही ऑल्सो सेड नो। मतलब दोनों लोगों को लगता था कि भाई डांस वाला ईरा है जिसमें एक्शन चल रहा है हीरो का, ये वो ईरा है जहां फिल्में बन रही हैं जिसमें डांस हो रहा है हीरो का, ऐसे में मेन लीड अगर व्हीलचेयर पे बैठ जाएगा तो क्या होगा। लेकिन यश साहब को पता था कि उनको अपने हीरो को सिंपथी दिलवानी है ऑडियंस से और उसके रैश बिहेवियर को जस्टिफाई करना है। फाइनली इस रोल को ऋषि कपूर ने ऑफ कोर्स हामी भरी एंड देन वी ऑल नो इट वाज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

चांदनी जैसी रोमांटिक फिल्म ना उस दौर में आई थी जब उस समय सिर्फ और सिर्फ एक्शन फिल्मों का बोलबाला था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और एक्शन फिल्में ही लोग देखने जाते थे बॉक्स ऑफिस पे। नाउ चांदनी कहते हैं कि वो उस रोमांटिक जॉनरा को ना फिर से वापस लेकर के आया। लेकिन आपको पता है यश चोपड़ा साहब को ये आइडिया आया कहाँ से? मैं बताती हूँ। कहते हैं कि यश चोपड़ा साहब पुणे से लेकर के बॉम्बे तक एक गाड़ी में बैठ के जा रहे थे किसी काम से, एंड ही सडनली नोटिस कि जितने भी बैनर्स, जितने भी पोस्टर्स लगे हैं बड़े बड़े फिल्मों के, वो सब एक्शन फिल्में हैं। एंड ही रियलाइज कि वेयर इज द रोमांस। दैट वॉज द टाइम जब उनको लगा कि ओहो, ये वो टाइम है जब मुझे वापस इंडिया को, बॉलीवुड को ना रोमांस देना चाहिए। और उन्होंने चांदनी बना दी। एंड वॉट अ सुपर डुपर हिट फिल्म। वेल, आज इसी फिल्म की बातें, इस फिल्म के गाने श्रेया के साथ। तो बस मिर्ची सुन रहे हो और सुनते रहो।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: वो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: ना,
0: सुनो तो, सुनो तो।

0: muskelrei.
1: Pelle sind auch muskelrei.
2: विनोद खन्ना की इस आदत से बहुत परेशान हो गए थे यश चोपड़ा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर हिट फिल्म चांदनी। अब क्या हुआ कि विनोद खन्ना हमेशा सेट पे बहुत लेट आते थे। यश चोपड़ा यूज्ड टू बी ऑलवेज पंक्चुअल, ऑलवेज ऑन टाइम एंड रेस्ट ऑफ द क्रू एज वेल। श्रीदेवी तो उस समय नई नई स्टार थी। सो विनोद खन्ना के लेट आने के चक्कर में यश चोपड़ा साहब को इतना खराब लगा, इतना गुस्सा आया दैट इट इवेंचुअली लेड टू चेंजिंग द स्क्रिप्ट। अगर आप चांदनी देखो तो होता क्या है कि पहले स्क्रिप्ट में सोचा गया था स्टोरी लाइन में कि फर्स्ट हाफ विल बी डेडिकेटेड टू ऋषि कपूर एंड आफ्टर ही मीट्स द एक्सीडेंट उसके बाद इंटरमिशन के बाद विनोद खन्ना पे फिल्म जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो इसलिए क्योंकि विनोद खन्ना के सीन्स लेने में ही ना आधे से ज्यादा दिन निकल जाता था और आधा दिन उनका वेट करने में। तो यश चोपड़ा साहब ने ना एकदम स्क्रिप्ट ही बदल दी। उन्होंने विनोद खन्ना को एक्चुअली में बस एक गेस्ट अपीयरेंस की तरह थोड़े बहुत सीन्स दिए। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ चांदनी के गाने आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ और आज चांदनी फिल्म की बातें हो रही हैं, इस फिल्म के गाने हो रहे हैं और जो अगला गाना है वो मुझे लगता है कि हर ब्राइड अपने संगीत में कभी ना कभी जरूर गाती है और इस पे परफॉर्म करती है। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, इसमें पहला संदेशा पता नहीं किसका आया, दूसरा संदेशा, तीसरा संदेशा, इट इज सच अ वेडिंग सॉन्ग। एंड यू नो ये गाना किसने गाया है? You will be shocked to know, you will be surprised to know. Well, ये गाना पैमेला चोपड़ा जी ने गाया है, यानी यश चोपड़ा की वाइफ। तो ये गाना आज हो जाए।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

व्हाइट चूड़ीदार, व्हाइट कुर्ता एंड लहरिए वाला दुपट्टा, पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। और कहते हैं चांदनी चौक के जितने भी स्टोर थे, जितनी भी शॉप्स थी, उन पे ना ये कॉस्ट्यूम कम पड़ गई थी, हजारों लड़कियां बस यही खरीद के जा रही थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी। सो भाई इस फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर पहले थी भानु अथैया जी, यस द रिनाउंड भानु अथैया जी। व्हाट हैपेंड वाज कि उनके कुछ क्लैश हुआ यश चोपड़ा जी के साथ एंड शी लेफ्ट द फिल्म। उसके बाद इन केम लीना दारू एंड लीना दारू ने भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस को यू नो ड्रेस किया था, बट फॉर हर चांदनी जैसा यश जी ने डिस्क्राइब किया था ना, उनके लिए उन्होंने बस एक व्हाइट कुर्ता, व्हाइट चूड़ीदार एंड लहरिए वाला दुपट्टा चूज किया एंड इट बिकेम आइकॉनिक। मेरी मॉम भी बताती हैं कि मतलब हर कोई वही कॉस्ट्यूम, हर लड़की वही कॉस्ट्यूम पहनना चाहती थी और पहनी भी। आप सोचो हजारों स्टॉक आता था चांदनी चौक में, ये आज तक की भी स्टोरी है। और व्हाइट चूड़ीदार और व्हाइट कुर्ता ख़त्म कुछ ही दिनों में। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म का गाना विच इज संग बाय सुरेश वाडकर। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गोविंदा ने इस रोल से मना किया और उसके बाद अनिल कपूर ने इस रोल से मना किया, और दोनों का रीजन पता है क्या था? उनको व्हील चेयर पे नहीं बैठना था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड यश चोपड़ा साहब को अपने रोहित को तो व्हील चेयर पे बैठाना ही था। वेल फाइनली उस रोल को हाँ करी थी ऋषि कपूर ने। पुरानी जीन्स पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी, इसी फिल्म के गाने भी हो रहे हैं। तो यश चोपड़ा साहब ने सबसे पहले अनिल कपूर को ये रोल ऑफर किया था ऑपोजिट श्रीदेवी, ही सेड नो। उसके बाद उन्होंने ऑफर किया था ये रोल गोविंदा जी को, ही ऑल्सो सेड नो। मतलब दोनों लोगों को लगता था कि भाई डांस वाला हीरा है जिसमें एक्शन चल रहा है हीरो का, ये वो हीरा है जहां फिल्में बन रही हैं जिसमें डांस हो रहा है हीरो का, ऐसे में मेन लीड अगर व्हीलचेयर पे बैठ जाएगा तो क्या होगा। लेकिन यश साहब को पता था कि उनको अपने हीरो को सिंपथी दिलवानी है ऑडियंस से और उसके रैश बिहेवियर को जस्टिफाई करना है। फाइनली इस रोल को ऋषि कपूर ने ऑफ कोर्स हामी भरी एंड देन वी ऑल नो इट वाज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ कम राइट बैक।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और ये तो वही टाइम होता है जब आराम से गाड़ी में बैठते हैं मैं और आप, गाड़ी के शीशे नीचे करते हैं और ठंडी हवा के झोंके में लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ उन लोगों को जो दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, जो जानते हैं कि उनका जो दिल पर है यानी जिससे वो प्यार करते हैं या फिर जो उनसे प्यार करता है, वो उनकी एक हाँ सुनना चाहता है लेकिन वो बस उन्हें टीज करके चले जाते हैं, कभी मुस्कुरा के कभी नाराज होके, लेकिन दिल की बात जुबान पे नहीं लाते। ये गाना आज उन्हीं लोगों के लिए। ऑन दैट नोट दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ, गुड नाइट। अगर आपको मुझसे वन टू वन ऐसे बात करनी है ना, या तो सिर्फ मैं बात करती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे एसएचआरई वाई श्रेया विद लव मेरा हैंडल है। गुड नाइट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

तेरा बस लगता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot. Yes.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। रेडियो मिर्ची के साथ
1: 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसार तारक दयार्द्र दृगञ्चलेन सौम्योपयन्त्र मुनिनाम मदर्शितौ ते श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसार तारक दयार्द्र दृगञ्चलेन सौम्योपयन्त्र मुनिनाम मदर्शितौ ते श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अपने वर्ड्स को सोच समझकर यूज करना क्यों जरूरी है, आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: शब्दों की एक बहुत सुंदर स्टोरी भी है कि एक भिखारी है और देख नहीं सकता है, और वो बैठा होता है स्ट्रीट के नजदीक पर, और एक कार्डबोर्ड पर लिखा होता है कि आई एम ब्लाइंड, आई कैन नॉट सी। लोग आते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ से गुजर जाते हैं, कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं करता। फिर एक लेडी वहाँ पर आती है, वो कार्डबोर्ड को उठाती है और उसकी दूसरी साइड पर शब्दों को बदल देती है, और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन दिन भर के अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन आता है।
2: अच्छा।
3: और उसको बहुत सरप्राइज्ड होता है कि ऐसा क्या वो लिख करके गई कि अभी जो आ रहा है कुछ ना कुछ उसके कटोरे में रख करके जा रहा है। शाम को जब वो लेडी ऑफिस से वापस आ रही होती है, वापस वहाँ पर रुकती है, वो देख तो नहीं सकता पर वो उसको जैसे उसके शूज को टच करता पहचान जाता, उसको पूछता आपने क्या लिखा, तो उसने कहा मैंने वही शब्द लिखे लेकिन भाषा अलग थी। और उसने लिखा था इट इज अ ब्यूटिफुल डे बट आई कैन नॉट सी, बहुत सुंदर दिन है लेकिन मैं देख नहीं सकता। दैट क्रिएटेड लॉट ऑफ कंपैशन इन पीपल। पहले वो फैक्ट था लेकिन फिर ये जो स्टेटमेंट थी उसने लोगों के अंदर रहम को पैदा किया। तो शब्दों में एनर्जी होती है, शब्दों में शक्ति होती है, हमें बहुत सोच समझ करके अपने शब्द यूज करने चाहिए, क्योंकि ये तीर की तरह है, एक बार ये तीर निकल गया
2: वापस नहीं आता।
3: कहते हैं तलवार का जख्म तो फिर हील हो जाता है, शब्दों का नहीं होता।
2: क्या बात है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: बिना मांगे एडवाइस देने से क्यों बचना चाहिए, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: हम राय अपनी कैपेसिटी से देते हैं, हम में से कितने लोग राय उनके कैपेसिटी से देते हैं।
4: सही बात है।
3: इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है, जब तक कोई मांगे नहीं देना नहीं चाहिए, और अगर कोई मांगता है तो जरूर ये चीज ऐड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी।
4: सही, बहुत बहुत बढ़िया,
3: मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप देख लें। सेकंड चीज, हम में से बहुत लोग इसलिए अपसेट हो जाते हैं कि सामने वाले ने राय मांगी, मैंने दी, तो भी उन्होंने उस पर चला नहीं।
4: हाँ।
3: तो फिर मांगा ही क्यों था।
4: सही बात। हाँ।
3: वैल्यू नहीं है शायद मेरे राय की।
4: हाँ।
3: ऐसा नहीं होता।
4: हाँ।
3: वैल्यू नहीं होती तो वो आपके पास क्यों आते हैं।
4: हाँ।
3: अगर वो आपके पास आपसे पूछने के लिए आए हैं तो जरूर उनको आपके एक्सपीरियंस की, आपके राय की, एडवाइस की वैल्यू है।
4: हाँ।
3: लेकिन हो सकता है कि उनकी कैपेसिटी और इस समय उनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है।
4: बहुत बढ़िया, समझना जरूरी है।
3: बहुत जरूरी है, इसलिए अपनी राय दे करके फिर न्यारा होना, डिटैच होना।
4: हाँ।
3: और उस व्यक्ति के प्रति गुड विशेस रखना।
4: हाँ।
3: कि आप जो भी चूज करें उसमें आपका कल्याण हो, ये जरूरी है।
4: वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है। अनिल गोयल जी लिखते हैं कि जब दुनिया नेगेटिविटी से भरी लगे तो अपनी पॉजिटिविटी कैसे बचाएं?
3: एक्चुअली दुनिया इतनी नेगेटिविटी से भरी हुई नहीं है जितनी हमें वो पिरोसा जाता है।
2: हाँ,
3: ज्यादातर क्योंकि वो कंज्यूम क्यों करते हैं मुझे भी नहीं पता, पर जो चीज कंज्यूम होती है वो चीज ज्यादा से ज्यादा पिरोसी जाती है, सप्लाई की जाती है। तो फिर हमें अपनी कंपनी को चेंज करना पड़ेगा। हम अगर उन्हीं चीजों के साथ है जहाँ से हमें, चाहे वो न्यूज का प्लेटफॉर्म है या कुछ भी प्लेटफॉर्म है, वो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो चारों तरफ नेगेटिविटी है तो कई चीजें चेंज करें। पहला, कंटेंट चेंज करें। कॉन्शियसली ऐसा कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू करें जो आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। ऑर्डिनरी लोग बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो न्यूज नहीं बनती है। मतलब देयर इज सो मच ऑफ काइंडनेस हैपनिंग इन साइलेंस। लेकिन अगर वो चीज हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमें बेटर व्यक्ति बनाती है। तो एक है कंटेंट, दूसरा है कंपनी, किन लोगों के साथ हम रहते हैं। भले कम हो, भले एक दो हो, लेकिन वो ऐसे होने चाहिए जो गॉसिप नहीं करते हैं,
2: एम्पावर करते हैं।
3: हाँ, मतलब अच्छी बातें करते हैं, एम्पावर करते हैं। एक ये पता नहीं चलता है लेकिन गॉसिप बहुत बड़ा डिप्लीटर है, बहुत बड़ा डिप्लीटर है। आप औरों के बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत फैला रहे हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग डिप्लीटर। फिर दूसरा, कंप्लेन करते रहना, ब्लेम करते रहना। तो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे को इंस्पायर करे, आपकी छोटी छोटी चीजों को देख करके खुश हो, आपको आगे बढ़ाए, आपको आगे बढ़ता हुआ देख खुश हो। तो ये भी तो बहुत बड़ी चीज है ना, हैविंग दैट वन फ्रेंड। जब वो देखता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो वो इनसिक्योर नहीं है लेकिन आपकी सफलता को देख करके खुश होता है। तो कंपनी होगी, कंपेनियन हो गया, कॉन्टेंट हो गया, ये सारी चीजों का अगर हम ध्यान देते हैं, थोड़ा समय अपने साथ बिताएं, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी किसकी है, खुद की। तो वो जो इनर थॉट्स हैं वो भी तो बहुत नेगेटिव हो गए हैं ना, तो वो जो इनर कम्युनिकेशन, इनर कॉन्वर्सेशन है उसको कॉन्शियसली पॉजिटिव करें। तो इतनी बुरी दुनिया लगे कि नहीं, एक्चुअली वी डोंट सी द वर्ल्ड एज द वर्ल्ड इज, वी सी द वर्ल्ड एज वी आर। तो हमारा लेंस ज्यादा नेगेटिव हो गया है, दुनिया मुझे नहीं लगता है कि नेगेटिव है।
2: बहुत बढ़िया। और अनिल गोयल जी, मुझे महात्मा गांधी की बहुत कमाल कही हुई एक बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था, आई विल नॉट लेट एनी वन वॉक विद देयर डर्टी फीट थ्रू माई माइंड। तो जब आपको लगे कि दुनिया ऐसा कर रही है तो उनको करने मत दो। और जो सिस्टर श्रेया ने बोला, ये सारी चीजें ट्राई करिए, शायद आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर पल्लवी सेन ने एक सवाल भेजा है, लिखती हैं कि लोगों पर ट्रस्ट करना और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना मुश्किल क्यों लगता है और इससे कैसे निकलें?
3: मुश्किल ट्रस्ट करना नहीं है, मुश्किल अंदर में फियर है कि वो बिट्रे नहीं करे।
2: जी, शायद पास्ट में कुछ हुआ हो।
3: पास्ट में हुआ भी हो सकता है, नहीं भी हुआ हो सकता, तो भी आप इतना सब कुछ सुन लेते हैं ना।
2: हाँ।
3: इतना सुन लेते हैं, इतना देख लेते हैं, तो भी फियर क्रिएट हो जाता है कि ये मेरे साथ ऐसा ना करे। ट्रस्ट एक कंफर्टेबल फीलिंग है।
2: हाँ।
3: आप अगर किसी को ट्रस्ट करते हैं तो इस एक्सपेक्टेशन से ना करें कि वो बिट्रे ना करेंगे। एक्चुअली आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जब हम कुछ करते हैं तो उसका बोझ दूसरे पर नहीं डालें। क्योंकि वो वैसे बिहेव करेंगे जैसे वो है। हर एक की जो पर्सनालिटी है वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है, वैसे ही रिएक्ट करता है। अगर हमने चूज किया किसी को ट्रस्ट करना, वो हमारे लिए था क्योंकि हमें कंफर्टेबल था।
2: लेकिन इंसान जब ऑलरेडी परेशान हो चुका है, शायद उसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, इसलिए पल्लवी जी लिख रहे हैं कि मेरे लिए मुश्किल होता है, तो दूसरों पर आप बोल रहे हैं कि भैया उनके भरोसे मत चलो, बट जब मैं ऑलरेडी बोलते ना दूध से जला छास भी फूक फूक के पीता है, तो ऐसे केस में क्या
3: करें ना? ऐसे केस में ये करें, केयरफुल हो जाएं, वेरीफाई करें, एकदम से किसी को ट्रस्ट ना करें। पहले आप देख लें थोड़ा समय की वो फ्रेंडशिप आपकी कैसी है। ये जरूरी है कि इस समय, जिस समय से हम गुजर रहे हैं, इसमें ये सब कुछ होता है। लोग धोखा भी देते हैं, बिट्रे भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, समय ऐसा है। तो आप अगर कहें कि नहीं, मैंने तो 100% ट्रस्ट किया था, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा कि ये सब हो सकता है, इसलिए आप ज्यादा केयरफुल हो जाएं। पर केयरफुल होना अच्छी बात है, पर ट्रस्ट करना ही छोड़ देना वो अच्छी बात नहीं है। हर एक को डाउट करते रहना, हर एक को डाउट के नजर से देखते रहना, वो आपको अनकंफर्टेबल फील कराएगा।
2: अब जब मैं इससे गुजर रहा हूँ ऑलरेडी, और ये बात मैं समझ गया कि भाई केयरफुल होना जरूरी है, लेकिन मिसट्रस्ट करना भी, हर आदमी को ट्रस्ट नहीं करना भी सही नहीं है, लेकिन अब मैं इसे गुजर रहा हूँ, तो क्या एक दो चीजें हैं जो शायद मैं कर सकता हूँ एज अ प्रैक्टिस कि भाई तुम ये करो, शायद आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप ट्रस्ट करने लगोगे लोगों को।
3: इसे थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होना पड़ता है कि ऐसा भी हो सकता है। और कुछ नहीं है एक्चुअली, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। कभी कोई कहेगा मैंने तो बहुत केयरफुल होकर के इसके साथ काम किया, बिजनेस किया, फिर भी इन्होंने मुझे चीट कर दिया, तो आप ट्रस्ट करते हैं। सेकंड नंबर है आप केयरफुल होते हैं, वेरीफाई करते हैं। फिर थर्ड नंबर है, क्योंकि दुनिया ऐसी है, आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो इट इज ओके, आई विल बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। हम जिस समय से गुजर रहे हैं वो बड़ा अनसर्टन है, उसमें आप हर चीज के लिए अगर अपने मन को प्रिपेयर कर लेते हैं,
2: ठीक है,
3: आप इन्वोक नहीं कर रहे हैं उसको। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। प्रिपरेशन फियर को खत्म कर देती है, प्रिपरेशन एंजाइटी को खत्म कर देती है। जब आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होते तो आपको अंदर में एंजाइटी और फियर बना रहता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: दूसरों की सुनिए लेकिन डिसीजन वही लीजिए जो आपको अंदर से सही लगे। आइए इस बैलेंस को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी शायद हम ट्रस्ट करना चाहते भी हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, जो शायद हमारे वेल विशर्स होते हैं, शुभ चिंतक बन के आते हैं शायद, वो हमें बोलते हैं नहीं नहीं तुम्हारे साथ पहला भी ऐसा हुआ, तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे साथ यही प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हो, तुम्हें पता नहीं दुनिया बहुत बुरी है, ये नहीं करो। तो जब हम कोशिश भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग हमें रोक रहे होते हैं, तो ऐसे केस में क्या करें?
4: देखो, लोग जितने होंगे हर एक का अपना ओपिनियन तो होगा ना
3: जी।
4: उनका ओपिनियन आप सुने लेकिन करें वो जो आपको कम्फर्टेबल है। आपको क्या कम्फर्टेबल है? जैसे आप मिसट्रस्ट की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों भी मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी जो एक आर्मी मैन का था। वो बार बार अपने इंटरव्यू में कह रहे थे मैं किसी भी चीज को ट्रस्ट नहीं करता। हमें सिखाया ही जाता है कि किसी भी चीज को ट्रस्ट नहीं करना। हम हर एक को मिसट्रस्ट की नजर से देखते हैं। तो सामने वाले ने कहा फिर आप जीते कैसे हैं? कहते वही तो हमें

0: हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है. इट इज़ नॉट कि उसमें जो उनकी छोटी सी बातें मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि भाई प्रेसिडेंट के आगे ग्लास भी रखा है, तो हम वो चीज़ भी ट्रस्ट नहीं करते.
1: सही बात है.
0: तो वो क्यों ट्रस्ट नहीं करते? क्योंकि हमें नहीं पता कि
1: उसमें क्या है,
0: मतलब किसका क्या इंटेंशन है. वी डोंट नो किसका क्या इंटेंशन है. अगर वो मिसट्रस्ट करते भी हैं तो फिर वो क्या करते हैं? वो उस ग्लास को 10 बार चेक करते हैं.
1: तो ट्रस्ट बट वेरीफाई.
0: एब्सोल्युटली. अब उनका अगर वो रोल है तो वो मिसट्रस्ट, व्हाट इज मिसट्रस्ट लीडिंग टू? प्रेपरेशन. अब इस चीज को समझे ना, अगर आप कुछ चीज को मिसट्रस्ट भी कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप बेटर प्रिपेयर्ड हैं, आपने उस चीज को चेक किया, फिर आपने डोर्स भी बंद कर दिए कि वो ग्लास अभी चेंज नहीं हो सकता है. सो कीवर्ड है प्रिपरेशन. अगर आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड होंगे तो आपको इतना उस चीज के प्रति एंजाइटी नहीं होगी. बाकी तो कोई भी आपको लिख करके गारंटी दे करके नहीं कह सकता है,
1: सही बात है,
0: कि आप ये करेंगे तो सामने वाला आपको बिट्रे कर ही नहीं सकता या धोखा दे ही नहीं सकता. हर एक का क्या इंटेंट है हमें नहीं पता. तो हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने को इवॉल्व कर सकते हैं. दुनिया को तो हर समय नहीं बदल सकते.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
4: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
5: The mortgage industry has changed over the years, पर हमारी honest advice आज भी वही है।
6: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
5: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
6: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service जिस पर सब करे भरोसा।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, इज़लिन।
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इन टू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 Oak Tree Road, इज़लिन, न्यू जर्सी।
9: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। It's a journey. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर नेत्रा जी का सवाल आया है, वो लिखते हैं कि अपने किसी करीबी को बीमारी के बाद बदलते हुए देखना बहुत पेनफुल होता है, ऐसे सिचुएशन में खुद को कैसे संभालें?
3: पहले तो ये समझना है कि लोग बदलते हैं, whether for good or bad, लेकिन वो बदलते हैं। और as a human being हमें ना चेंज अच्छा नहीं लगता। हम कहीं में कह भी देते हैं कि आप बहुत बदल गए हैं, बट कभी कभी सर्कमस्टेंसेस, एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमा व्यक्ति को बदल देते हैं। अब वो बदलना जो है वो अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है। तो पहली चीज चाहिए एक्सेप्टेंस। फर्स्ट चीज है कि सामने वाला अगर बदल रहा है किसी भी ट्रॉमा के कारण, एक्सेप्टेंस फॉर द पर्सन, बदलाव के लिए नहीं। हो सकता है कि वो बदलाव उनके लिए भी अच्छा नहीं है,
2: सही बात।
3: लेकिन व्यक्ति के लिए एक्सेप्टेंस क्यों नहीं उसके अंदर, आप ऐसे क्यों बन गए, आप ऐसे क्यों हो गए, बीमारी से पहले तो आप ऐसे थे, अभी आप ऐसे हो गए, वो आप उस व्यक्ति को और ज्यादा रिजेक्ट कर रहे हैं
2: जी।
3: तो पहली चीज चाहिए कि उस बदलाव, जो बदला हुआ व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए कम्प्लीट एक्सेप्टेंस चाहिए।
2: सही बात है।
3: सेकंड, कंपैशन। अगर वो बदलाव अच्छे के लिए नहीं है, तो वो भी तो हर्ट कर रहा है, वो व्यक्ति भी तो अंदर से दुखी है, चाहे उसको फियर ही है कि बीमारी दोबारा ना आ जाए, चाहे वो बीमारी के बाद बहुत शांत हो गया है, इतना पहले जैसा उमंग में नहीं रहता, तो कंपैशन की वो भी हर्ट कर रहा है
2: जी, बिल्कुल।
3: एंड थर्ड, लव। कि आपका लव उनको एम्पावर कर सके,
2: क्या बात,
3: कि वो वापस अपने जो उनका पुराना वाला जो स्वरूप है, जो आपको लगता था बेटर है, उसमें वापस आ सके। सो एक्सेप्टेंस, कंपैशन, एंड देन प्योर सेल्फलेस लव।
2: और नेत्रा जी, जब ये सिस्टर श्रेया ये कह रही थी एक्सेप्टेंस, प्योर लव, एंड ऑफ कोर्स प्रोबेबली अ लॉट ऑफ पेशेंस, तो मुझे एक बहुत कमाल की किताब है, ट्यूजडेज विद मॉरी, मिच एल्बम ने लिखी है, तो आपको अगर ये किताब कहीं मिल जाए तो जरूर पढ़िए। तो इसमें ये सारी चीजें लिखी हैं, जब एक बहुत बड़ी बीमारी से कोई गुजर रहा होता है तो ये सारी चीजें ही काम आती हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: वॉरिड अबाउट हाउ योर चाइल्ड विल स्टे कनेक्टेड विद देयर रूट्स और मेंटेन आवर ट्रेडिशंस?
2: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
1: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzylin।
5: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
0: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीसिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
5: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
6: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
4: सिस्टर, एक सवाल आया है। ओम शांति, मेरा नाम साक्षी है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो जो गलतियाँ उसने जीवन में की हैं उनका पछतावा क्यों होता है और कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि आत्मा अभी कुछ और दिनों तक शरीर के साथ रहनी चाहिए थी?
5: सी, जो हम स्पिरिचुअली समझते हैं, पश्चाताप तो कोई शरीर छोड़ने के बाद ही नहीं होता। पश्चाताप माना हम लाइफ में भी तो कितना पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप क्या होता है कि आपने कुछ किया और बाद में आपको रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
4: लेकिन जीवन के आखिरी दिनों में शायद जब आत्मा शरीर छोड़ने वाली होती है तो उस समय शायद बहुत लोग बोलते हैं कि काश मैंने नहीं किया होता, शायद उनका उस तरफ,
5: क्योंकि साथ में क्या जाता है?
4: कुछ नहीं।
5: मे बी उस समय नहीं, कुछ नहीं क्या, साथ में यही जाता है ना, कर्मों का हिसाब किताब। आपको क्यों पश्चाताप हो रहा होता है? क्योंकि आपने बहुत सारी उन चीजों को इम्पोर्टेंस दी होती है जो चीजें साथ में जाने वाली नहीं होती, और उसके लिए आपने अपने वैल्यूज के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किया होता है। सी, कर्मा इज नॉट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ऐसा नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट है। आप समझे ना, एक लॉ है, जैसे ग्रेविटी का लॉ होता है, आपने कुछ ऊपर फेंका तो वो नीचे आता है। तो कर्मा का भी लॉ क्या कहता है, कॉज एंड इफेक्ट, जो आपने किया है उसका एक इफेक्ट है। अब हमने करते समय तो कई बार हम जस्टिफाई कर देते हैं, ये करना जरूरी था, झूठ बोलना जरूरी था, गुस्सा करना जरूरी था, उस समय पर कर दिया। अब जब उसका इफेक्ट आ रहा है, इफेक्ट मेंटल सफरिंग भी तो एक इफेक्ट होता है ना। आप पश्चाताप कर रहे हैं, गिल्ट कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं सब कुछ जीवन में ठीक है, पता नहीं फिर भी क्यों इतनी उदासी है, खुशी क्यों नहीं अनुभव होती है। मेंटल सफरिंग बहुत बड़ा एक कार्मिक रिटर्न है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको अच्छा ही नहीं लगता, आपको जीवन जीने की दिल ही नहीं होती, तो फिर उस समय कई बार पश्चाताप होता है। लेकिन पश्चाताप की जगह रियलाइजेशन ज्यादा अच्छी है। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपने रियलाइज किया कि ये ठीक नहीं था, आगे नहीं करें, बस और क्या।
4: इसमें आप आगे नहीं करें बोलना चाहती है, क्योंकि she's talking about somebody who's, or she's talking about herself.
5: Yeah, अगर आपने,
4: she's about to pass on.
5: अगर before also, see what is soul going to take, अगर आपने उस चीज को realize भी किया ना, तो वो स्मृति भी आपके साथ जाती है।
4: अरे वाह, क्या बात। आप, जब आपने रियलाइज किया तभी
5: सोल अपने साथ संस्कार और हिसाब किताब लेकर जाएगी। तो अगर आपने उस चीज को रियलाइज भी किया तो आपके संस्कार में वो चीज चली जाती है कि ये गलत है। तो इवन अगर आपका कॉस्ट्यूम चेंज होगा तो वो स्मृति आपको एक बार जरूर हिट करेगी कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देन अगेन इट इज अ डिसीजन कि करना है कि नहीं करना, फिर उससे एक नया कॉन्सिक्वेंस क्रिएट होगा, लेकिन आपके पास एक चॉइस जरूर होगी।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
3: नो
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
5: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
6: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
5: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
10: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
9: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
10: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
9: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islip.
11: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: it's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi, it's hot.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: सिस्टर, एक सवाल आया है, लिखते हैं कि नमस्ते सिस्टर श्रेया, मैंने हाल ही में आपको सुनना शुरू किया है और आपकी बातें मुझे सच में बहुत इंस्पायरिंग लगती हैं। मैं अपने पास्ट को लेकर स्ट्रगल कर रही हूं। जिस इंसान पर मैंने 4 साल ट्रस्ट किया, उसने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के रिलेशनशिप खत्म करके मुझे घोस्ट कर दिया। 4 महीने हो गए हैं, मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे पता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, फिर भी एक सवाल बार बार मुझे डिस्टर्ब करता है कि कोई बिना कुछ कहे सब कुछ कैसे छोड़ सकता है। जब सामने से क्लोजर ना मिले तो खुद को कैसे हील करें और कैसे मूव ऑन करें?
4: उसको एक खूबसूरत मोड़ समझ करके भूल जाए। See, the time that you have spent with that person was very good. Closure बाहर से नहीं मिलता, closure खुद को देना पड़ता है। ठीक है, आपके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ, आप चाहेंगे ये चीज का आंसर आपको मिले कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। लेकिन हम चाह रहे हैं पर वो नहीं बात करना चाह रहे या वो नहीं इस चीज को आंसर कर रहे हैं, तो कितना उसके अंदर और इन्वेस्ट करेंगे, कितना और अंदर ही अंदर अपने साथ नेगेटिव कॉन्वर्सेशन करेंगे। फिर कभी कभी हमारा अपने से फेथ भी खत्म होना शुरू हो जाता है
3: कि मुझे में कुछ कमी होगी।
4: हाँ, मुझ में कोई कमी होगी, मेरे में कोई प्रॉब्लम होगी। देन वी कीप इमेजिनिंग थिंग्स, वी कीप अज्यूमिंग थिंग्स, वी कीप, और वो हमें वीक करता है ना। हमने कोई रिलेशनशिप में अपना 100% दिया, इंजॉय किया, बहुत कुछ उससे सीखा, ट्राई भी किया उसको वर्कआउट करने के लिए। आई विल नेवर से कि छोड़ दें। अगर किसी भी रिश्ते के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए वो जब तक बन सके, क्योंकि रिश्ता क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। दो जने होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट अगर होते हैं तो संस्कारों की थोड़ी रास करनी पड़ती है। कभी किसी को झुकना पड़ता है, कभी किसी को थोड़ा सहन करना पड़ता है, कभी किसी को लेट गो करना पड़ता है, तो ही वो रिश्ता आगे बढ़ता है। हर समय आप समझे मैं ही राइट हूँ तो भी वो रिश्ता नहीं बनता है। तो रिश्ते के अंदर एक एफर्ट होता है, आप इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने सब कुछ कर लिया और वो व्यक्ति क्लियरली कहता है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, देन आई डोंट थिंक इट इज फेयर ऑन यू। क्या वो चीज को सोच सोच सोच सोच करके दुख में जाएं, उसका जख्म क्रिएट करें, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएं? इट इज हार्मिंग यू, आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपका वर्क, आपका एनवायरमेंट। इसलिए लेट गो, क्लोजर अपने को दे। बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, शायद अब शायद इससे भी कोई और अच्छा मिलेगा। मे बी आई डिजर्व समबडी बेटर। वैसे भी अगर कोई ऐसे आपको बिल्कुल छोड़ करके चला गया,
3: उसके भरोसे
4: आप रियलाइज भी कर रहे हैं कि आप उसके साथ जीवन भर तो बिता नहीं सकते हैं, सो देन गिव दैट क्लोजर टू योर सेल्फ। अच्छा ही हो गया, किसी परमानेंट रिलेशनशिप में जाते, मैरिज आदि होती, इससे पहले मुझे इस व्यक्ति के बारे में पता चल गया। ग्रेटिट्यूड फील करें। किसी व्यक्ति की अगर कोई नेगेटिविटी पहले सामने आ जाती है और आप बच जाते हैं, तो ये भी जैसे आपका कोई अच्छा पुण्य कर्म है।
3: आई थिंक उन्होंने क्लोजर ले लिया जब उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। क्लोजर आपको मिल
4: नहीं, क्लोजर तब तक नहीं मिलता है जब तक हम उस दर्द से बाहर नहीं आते
3: या सामने वाला मुझे जवाब नहीं दे,
4: जो भी कारण है। लेकिन दर्द तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, अभी वो जो भी जवाब देंगे, लेकिन दर्द तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने उसको पकड़ा हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं होल्ड ऑन कर रहा हूँ, आई एम नॉट लेटिंग गो। क्लोजर उस दिन होगा व्हेन आई से आई लेट गो, दे वर ब्यूटीफुल 4 इयर्स
3: एंड आई मूव ऑन।
4: बहुत सुंदर थे, फिर ये सीन हुई, बहुत अच्छी नहीं थी, बट नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। शायद इससे अच्छा कोई सीन लाइफ में आना बाकी है, इससे अच्छा व्यक्ति आना बाकी है, और अब वो चीज अंदर पेन क्रिएट नहीं कर रही है, वो अंदर दुख नहीं दे रही है, यू आर कम्फर्टेबल, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, दैट इज क्लोजर। आप दर्द में है तब तक वो क्लोजर नहीं है।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRB Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.
6: It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: अडल्टिंग में सबसे डेंजरस गेम होता है जब हम सुबह उठते ही कहते यार बस 5 मिनट और, एंड देन बूम, यू आर लेट, योर कॉफी इज कोल्ड एंड योर फोन हैज 47 न्यू व्हाट्सएप मैसेजेस। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में और मिर्ची मॉर्निंग्स ऑफिशियली शुरू हो चुका है। वेदर यू ड्राइविंग टू वर्क, प्रिटेंडिंग टू वर्क, ड्रॉपिंग द किड्स ऑफ टू स्कूल, या फिर स्टैंडिंग इन योर किचन वंडरिंग व्हाई यू ओपन द फ्रिज फॉर द फोर्थ टाइम, आई हैव गॉट यू। और मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूं अगले कुछ घंटों तक और आज का प्लान काफी सिंपल है। वी आर गोइंग टू लिसन टू सम अमेजिंग बैंगर म्यूजिक, थोड़ी सी गॉसिप करेंगे, अच्छा थोड़ी ज्यादा कर लेंगे, और फिर काफी सारी देसी बातें करेंगे। और ये सब इनफ नहीं है तो बीच बीच में तुम्हें अराउंड द वर्ल्ड से खबरें भी सुनाती रहूंगी। सो पागल, आप ग्रैब दैट कॉफी, चाय, ब्रेकफास्ट, जो कुछ भी कर रहे हो, एंड लेट्स मेक दिस मॉर्निंग अ लॉट मोर मिर्चीदार। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। टॉक टू मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पे मैसेज करो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: jewels. We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
1: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
2: Sneakers, Kanjivaram sari, aur wahi electrifying vibe. Experience the Queen of Pop, Usha Uthup, live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
4: Nine Nights, One Divine Spirit.
5: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscat Way.
4: Join daily Garba, October 11th to 19th at 7 PM.
5: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th and Sharad Purnima Garba on the 25th.
4: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Iselin.
8: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
9: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
8: Wait, they can see us on Sunday?
9: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
10: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
11: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में.
10: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
12: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
13: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए Lion Mortgage, assisting first time home buyers, also offering zero closing cost refinance option. For more information, call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ एंड वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स। चलो रिवाइंड करके पता करते हैं कि क्या हुआ था आज के दिन। 331 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट डिफीटेड पर्शियन किंग डारियस द थर्ड एट द बैटल ऑफ गाउगमेला। फिर 1903 में बेसबॉल का फर्स्ट मॉडर्न प्रोफेशनल वर्ल्ड सीरीज गेम हुआ, बॉस्टन अमेरिकन्स वर्सेस पिट्सबर्ग पायरेट्स। 1908 में हेनरी फोर्ड इंट्रोड्यूस्ड द मॉडल टी अराउंड $825 to $850 में एंड सडनली कार्स बिकेम एक्सेसिबल टू द मासेस। 1949 में माओ ज़ेडोंग प्रोक्लेम्ड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन बीजिंग टियानमेन स्क्वायर। 1960 में नाइजीरिया बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड 1971 में वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड ओपन्ड नियर ऑरलैंडो, बिकॉज अपेरेंटली हिस्ट्री के बीच में एक जायंट कासल भी तो जरूरी होता है। एंड दैट्स योर हिस्ट्री रिवाइंड मिर्ची स्टाइल विद मी प्रिसिला। Talk to me, Mirchi Pris is my handle name, Instagram or X per and WhatsApp per. Mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647 244. Stay tuned and stay.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
3: मेरे बेटे के लिए justice चाहिए.
4: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
2: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaideep Ahlawat, and many others.
5: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
2: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
5: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
2: Released by Zee Studios nationwide.
6: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए. इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे. Only at RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
8: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzylin.
9: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
10: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
11: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
10: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
12: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
13: Beta, shaadi next week hai. Aur tumhara abhi paise bhejta hu, sirf dialogue hi hai.
14: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
13: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
15: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
16: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
17: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
16: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
17: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
16: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
18: Listener mai back to back gana sunega.
19: Back to back gana sunega.
18: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
20: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
6: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
5: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
7: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
8: आवर बिजनेस वाज गेटिंग रिप्ड ऑफ बिफोर विद हाई प्रोसेसिंग फीस। आई एम सो ग्लैड वी स्विच्ड टू NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
12: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
5: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
6: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
5: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
7: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड आवर। सबसे पहले दुबई से टेल अवीव जाने वाली फ्लाइट में एक एक्सट्रीमली सीरियस कॉकपिट इंसिडेंट के बाद यूएई ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक को पायलट ने कैप्टन स्मिथ मचार को अलेजेडली स्टैब किया और फ्लाइट को सऊदी अरेबिया डाइवर्ट करके सेफली लैंड कराया गया। इन्वेस्टिगेटर्स आर नाउ लुकिंग इन टू एग्जैक्टली वॉट हैपेंड एंड द मोटिव। नंबर टू पर इसी से रिलेटेड, मचार इज बींग प्रेज फॉर हिज एक्शंस। रिपोर्ट्स से द मुंबई बॉर्न कैप्टन डिस्पाइट बींग इंजर्ड हेल्प्ड passengers and crew regain control of the situation. Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump have publicly praised his courage. And lastly, Cristiano Ronaldo has left Portugal's national team camp. CR7 announced that he decided to leave after a conversation with the Portuguese Football Federation president and said he would reveal the reasons in due course. This follows reports of tension involving coach Jorge Jesus. The federation confirmed Ronaldo's departure but did not give further details. And that's Mirchi Hour ka 3. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Connect karo mujhse Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris and WhatsApp ka number hai 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burka, burka. La fiesta la burka. Mirchi, burka.
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रिप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए। ठीक है, आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
1: बीप। अरे बोल कौन रहा है?
3: अरे बोल कौन रहा है
2: सर, ये वाला भेज दें बीप।
1: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
2: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर बीप।
1: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
3: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
2: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजना सर, ये वाला बीप।
1: अरे बावले हो गए हो क्या?
3: अरे बावले हो गए हो क्या?
2: सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, ये और करोगे बीप।
1: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
3: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
2: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं लास्ट।
1: ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
3: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
2: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
1: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
2: सर ये वाला ठीक है बीप।
1: अबे पागल ले, तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
2: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
1: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
3: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
2: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
1: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
3: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
2: सेंट सर, ये वाला गया सेंट। ठीक है सर।
1: अरे भाई किसको भेज दिया?
2: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
1: अबे ओ पागल ये क्या कर दिया, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पागल।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: This October, witness the peak of entertainment. Festival of Lights, a premier community celebration with artists like Jayashree, Sparsh Shah, Nini Iris and dance academies like Bolly Moves, Shivalik, Tara Art Academy. Enjoy food, garba and one-of-a-kind fireworks on October 3rd at Kennedy Park, Sayreville from 3 to 9 p.m. Entry and parking is free.
7: Sona kharidne ke soch rahe hain? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price badh jaye, gold bars kharide wholesale price pe only at RK Jewels. RK Jewels, best quality, best price.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
10: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
11: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
12: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
13: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज। इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
14: अक्टूबर 11th अग्रणी दुर्गा पूजा NJ। टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा। कॉल 9549188589।
15: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
16: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
15: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
17: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
18: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
19: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
18: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
1: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
7: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
1: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
7: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
4: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
4: अब
20: मिर्ची का
21: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Priscilla, it's hot.
1: Good morning, my Desi people. Priscilla here, and let's get you caught up with Team India ka full sports dhamaka.
2: Mirchi, watch it.
1: सबसे पहले एशियन गेम्स 2026 की बात करते हैं. इंडिया इज करंटली सिटिंग एट नंबर 8 ऑन द मेडल टेबल विद 62 मेडल्स, 10 गोल्ड्स, 22 सिल्वर एंड 30 ब्रॉन्ज. लास्ट एशियन गेम्स में हांगजू में इंडिया फिनिश फोर्थ विद अ रिकॉर्ड 107 मेडल्स. सो अभी गेम खत्म नहीं हुआ है तो मेडल टैली जो है वो थोड़ा सा और बढ़ने वाला है. एंड हॉकी में प्रॉपर इंडिया पाकिस्तान मिर्च मसाला लगा हुआ है. इंडिया बीट पाकिस्तान 4-3 इन अ थ्रिलर विद अभिषेक स्कोरिंग द विनर जस्ट 45 seconds before the final whistle. This sends India into their 12th Asian men's hockey final and they are now guaranteed at least a silver. Aur cricket mein bhi picture kaafi blockbuster hai. India thrashed Sri Lanka for 124 runs, bowling them out for just 45, and now India versus Pakistan for Asian Games cricket gold on October 3rd. अरे यार, सैटरडे का कैलेंडर अभी से ब्लॉक करना पड़ेगा. बट एक बिटर स्वीट अपडेट है, इंडियन टेनिस एंड्स द गेम्स विदाउट अ मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1986 आफ्टर सुमित नागल्स क्वार्टर फाइनल एग्जिट. एंड क्रिकेट फैंस होल्ड योर टाई, यस्टरडे इंडिया चेज्ड अ मैसिव 406 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज. शुभमन गिल स्मैश्ड एन अनबीटन 223 रन्स. रोहित शर्मा हिट 101 रन्स एंड हिस्ट्री वॉज मेड बिकॉज 5 बैटर्स स्कोर्ड सेंचुरीज इन 1 ओडीआई फॉर द फर्स्ट टाइम ever in क्रिकेट हिस्ट्री. बेसिकली गुवाहाटी में क्रिकेट नहीं हो रहा था बल्कि बैटिंग का महासंग्राम चल रहा था. मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में, एंड फॉर मोर सच स्पोर्ट्स अपडेट्स सुनते रहो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर, और फॉलो भी कर लो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
3: मेरे बेटे के लिए justice चाहिए.
4: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
2: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar, and many more.
5: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
2: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
5: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
2: Releasing nationwide by Zee Studios.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए. गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें. मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर.
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
9: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
10: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
11: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
12: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
13: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना. इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
14: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
15: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे.
16: इनएफिशिएंट,
17: वेरी कॉम्प्लेक्स,
16: क्लमजी और
17: कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन.
16: डिसजॉइंटेड सॉफ्टवेयर को यूज करना उतना इजी नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे सॉफ्टवेयर से छुटकारा पाओ, अपने बिजनेस के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. यस, यू हर्ड दैट राइट, यू कैन रन योर एंटायर बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग से लेके कस्टमर सपोर्ट, अकाउंटिंग, ऑपरेशंस या HR. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one.
18: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
19: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
18: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
20: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
18: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
21: एक ही होता है.
18: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
22: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. एंड मिर्ची पर आप बर्थडे बैश का टाइम आ चुका है. सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू ऑल द बर्थडे बेबीज हू आर सेलिब्रेटिंग टुडे. इट्स 1st October, नया महीना शुरू हुआ है. एंड आज की बर्थडे गेस्ट लिस्ट जो है ना, इट्स गिविंग फुल बॉलीवुड टू हॉलीवुड क्रॉसओवर. सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू अनुष्का रंजन, विनीत श्रीनिवासन, जोया हुसैन एंड एक्टर महेश ठाकुर, ऑल सेलिब्रेटिंग टुडे. एंड म्यूजिक लवर्स, दिस डेट ऑल्सो बिलोंग्स टू द लेजेंडरी कंपोजर एस डी बर्मन, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी. द मैन बिहाइंड हिंदी सिनेमाज मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेलोडीज. एक तो मैं थोड़ी देर में तुम्हें सुनाने ही वाली हूँ. हॉलीवुड में भी आज बर्थडे स्क्वाड इज स्ट्रॉन्ग. जूली एंड्रूज, द ओरिजिनल मैरी पॉपिंस एंड साउंड ऑफ म्यूजिक आइकॉन, ब्री लार्सन एके कैप्टन मार्वल एंड कॉमेडियन एंड वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स जैक गैलिफियनाकिस, बिकॉज अपेरेंटली अक्टूबर 1st बेबीज कम विद लोड्स एंड लोड्स ऑफ टैलेंट एंड अ लिटिल बिट ऑफ क्रेजी. एंड ऑल्सो टूडे वी हैव फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जिनका आज हैप्पी बर्थडे होता है. एंड ऑल्सो सेलिब्रेटिंग टुडे इज जमैकन डांस हॉल स्टार शेंसिया. सो वेदर यू वेकिंग अप राइट नाउ या फिर कहीं और पर पार्टी कर रहे हो कल रात से, हैप्पी बर्थडे टू यू. ढेर सारा केक खाओ, कैलोरीज को भूल जाओ और मिर्ची सुनते जाओ. मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: गई चुल।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: ये मोह मोह के धागे।
5: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती हैं।
1: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है। BBSCA presents मोनाली ठाकुर लाइव, एक एक्सक्विजिट इवनिंग, अ स्पेक्टेकुलर कॉन्सर्ट, अक्टूबर 10th 7:30 PM, प्लेनफील्ड हाई स्कूल ऑडिटोरियम। टिकट्स ऑन सुलेखा एंड mongobashi.sca.org। कॉन्टैक्ट 6503055624।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड आवर पीडियाट्रिशियन ऑफिस इज क्लोज टिल मंडे। व्हाट डू वी डू?
6: डोंट वरी, आई एम कॉन्टेक्टिंग 7 days पीडियाट्रिक्स, दे विल आंसर द कॉल एंड गाइड अस। नाउ वी विल बी एबल टू सी देम इन द मॉर्निंग।
5: वेट, दे कैन सी अस ऑन संडे?
6: वी आर ओपन 7 days अ वीक इंक्लूडिंग संडे। द ऑफिस इज ओपन इन द इवनिंग्स एंड ऑन वीकेंड्स, ऑफरिंग सेम डे सिक केयर। वी हैव बीन सर्विसिंग एडिसन एंड सराउंड areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
7: Wow! Yahi to hai mera dream lehenga.
8: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
7: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
8: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
7: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
9: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
10: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
9: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
6: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
11: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
12: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
14: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
15: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमरखोल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। Register today at my3usa.org.
16: Listener MI, back to back gana sunega.
17: Back to back gana sunega.
16: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yeah.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो जी, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और आप पता करते हैं गोल्ड का क्या हालचाल चल रहा है।
2: RajJewels.com wishes everyone happy and healthy morning. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,370. आज गोल्ड के प्राइजेस $4,370 पर ट्राउंस के साथ अपवर्ड ट्रेंड पर हैं। गणेश चतुर्थी, पुष्य नक्षत्र, धनतेरस, दिवाली, डांडिया सब हमारे साथ सेलिब्रेशन के लिए तैयार हैं और गोल्ड के प्राइसेस ऑलरेडी अपवर्ड ट्रेंड ले रहे हैं। इससे पहले गोल्ड और ऊपर जाए, 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GIS सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड। आइए राज ज्वेल्स के साथ 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट के साथ गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए 9 मंथ की फाइनेंसिंग में ज्वेलरी घर लेके जाए और RajJewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: गोल्ड रेट अपडेट सुना तुमने एक्सक्लूसिवली मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। कमिंग अप मिर्ची दार बैंगर्स फॉर यू, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. Priscilla here, and this is the last hour of Mirchi Mornings, and now we are heading straight to
0: Mirchi Hour Gun 3.
1: सबसे पहले इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस से हाशिम मूसा, ऑल्सो नोन एज आसिफ फौजी, हैज बीन किल्ड इन जम्मू

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vid vala burga. Milci, burga.
1: हेलो
2: हेलो डॉक्टर सविता से बात करा दी है।
1: तो सविता बोल रही हूँ।
2: डॉक्टर ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
1: क्या परेशानी है?
2: मैं एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता है।
1: तो वो तो भरता ही है।
2: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
1: अच्छा।
2: ये बुढ़ापे में हो गया। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
1: हाँ हाँ।

0: हाँ। मेरी प्यास बुझ जाती है।
1: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या पता आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
1: नहीं मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं। नहीं, बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
0: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
1: अच्छा।
0: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
1: अच्छा, लेकिन ना, मैं समझ रही हूँ।
0: हाँ क्या समझ रही
1: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से। मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
0: डॉक्टर सुमिता।
1: हाँ जी,
2: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही हूँ। देखा मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा।
1: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
2: बिल्कुल मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
1: कुकड़ू को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: नवरात एकत स्पिरिट
7: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्का टवे मा
6: रमो गरबा डेली 11-19 अक्टूबर सांजे 7 कलाक थी।
7: तारीख 18 ना रोज 8 यज्ञ, 19 नौम यज्ञ अने 25 शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी। विजिट gayatricenter.org टुडे।
8: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
10: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
11: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
12: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
11: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
13: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
14: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
15: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
18: Durga Puja ka celebration ho aur Kolkata ka flavor na ho, aisa kaise?
19: Maitri bring थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
20: October 24th and 25th, Hamar Hold Upper Elementary School, East Brunswick, New Jersey. Register today at my3usa.org.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, stop scrolling and start listening. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और अब मेरे पास में है राशि जोन का पहला पार्ट.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: It is यानी मेष राशि. आज का दिन काफी बेनिफिशियल है. स्टैंडिंग हेल्थ कंसर्न्स में रिलीफ मिल सकता है. बट बजट में थोड़ा सा ब्रेक लगाओ यार. पैसा है तो जरूरी नहीं है कि हर चीज एड टू कार्ट करते जाओ. लकी कलर इज कोरल रेड. लकी नंबर इज 14. टॉरस यानी कि वृषभ राशि. रिलैक्स फील करोगे आज. प्रेज और गेन्स भी आ सकते हैं. बस क्लाउडी जजमेंट से बचना. स्पेशली अल्कोहल अवॉइड करो. आज डिसीजन सोबर लेना लेकिन वाइब्स हाई रखना. लकी कलर इज सेज ग्रीन. लकी नंबर इज 6. जेमिनी यानी मिथुन राशि. क्रिएटिविटी इज ऑन ब्रो. मून भी तुम्हारे साइन में है सो आइडियाज फुल स्पीड पर तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं. बट रीसेंट इमोशनल हर्ट्स को फेस करने के लिए करेज चाहिए. और स्पेंडिंग कंट्रोल उदय कंट्रोल. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू. लकी नंबर इज 23. कैंसर यानी कर्क राशि. फाइनेंसेस स्टेडी है. रिलेशनशिप सॉफ्ट एंड स्वीट है. लेकिन हेल्थ को इग्नोर मत करो यार. एंड रिस्की डील से थोड़ा सा डिस्टेंस रखो. हर अपॉर्चुनिटी गोल्डन नहीं होती है. कुछ सिर्फ ग्लिटर भी होता है यार. लकी कलर इज पर्ल. लकी नंबर इज 11. लियो यानी कि सिंह राशि. आज योर पोलाइट साइड इज बेसिकली विनिंग अवार्ड्स. वर्बल पैसे मिलेंगे और वर्क प्लेस स्ट्रेस भी ईज हो जाएगा बिकॉज योर वर्क इज शाइनिंग. बस ईगो को थोड़ा सा कॉफी ब्रेक पर भेज देना. लकी कलर इज सनफ्लावर येलो. लकी नंबर इज 19. वर्गो यानी कन्या राशि. लक इज हेल्पिंग यू एट वर्क विथ मनी और इमोशनली भी माइंड पॉजिटिव वाइब्स रिसीव कर रहा है. लव होप ऑल दैट गुड स्टफ. मतलब कि यूनिवर्स कह रहा है थोड़ा सा स्माइल तो बनता है बॉस. लकी कलर इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 28. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और अभी तक तुमने अपनी राशि नहीं सुनी है तो रिलैक्स. अगले बार में तुम्हारी राशि लिस्टेड होगी. तब तक के लिए तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स और जाकर मुझे फॉलो करो. मैं हूँ मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. दैट इज MIRCHIPRIS. और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. और अभी के लिए बैंगर्स का टाइम है. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: This festive season, Kalol of New Jersey presents two mesmerizing nights.
3: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
2: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalol.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
5: आवर बिजनेस वाज गेटिंग रिप्ड ऑफ बिफोर विद हाई प्रोसेसिंग फीस. आई एम सो ग्लैड वी स्विच्ड टू NRS Pay.
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
7: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलन.
11: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
14: अब मिर्ची खा.
16: Radio Mirchi, it's hot.
2: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. चलो बता करते हैं आज राशि जोन पार्ट टू में क्या चल रहा है.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: Libra, यानी कि तुला राशि, आज फोकस शुड बी ऑन यू, पर्सनल गोल्स, थिंग्स दैट जेन्युइनली मेक यू हैप्पी, और फैमिली गाइडेंस, परफेक्ट कॉम्बो. थोड़ा सा सेल्फिश होना अलाउड है आज के दिन, हेल्दी वाला. लेकिन ओके, लकी कलर इज रोज पिंक, लकी नंबर इज 32. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, म्यूचुअल हार्मनी और मैरिटल हैप्पीनेस का वाइब जो है ना काफी स्ट्रॉन्ग है आज. बस खुद को अननेसेसरली क्रिटिसाइज मत करो, मिरर को मिरर ही रहने दो, एचआर डिपार्टमेंट मत बनाओ. लकी कलर फॉर यू इज Burgundy, lucky number is 9. Sagittarius, यानी कि धनु राशि, सीनियर्स का वर्क प्लेस प्रेशर और घर में थोड़ा सा डिस्कॉर्ड थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है, लेकिन डीप ब्रेथ लो. हर प्रॉब्लम का आंसर रेजिग्नेशन और भाग जाना नहीं होता है. लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 17. कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आज खुद को मोटिवेट करो, ऑप्टिमिज्म रखो यार, कॉन्फिडेंस और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों इंप्रूव होंगे. मतलब कि यूनिवर्स कह रहा है यू हैव गॉट दिस बेब, अब बस तुमको ही मानना है. लकी कलर इज मिडनाइट ब्लू, लकी नंबर इज 35. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, मेडिटेशन एंड योगा कैन ब्रिंग पॉजिटिव फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी. 5 मिनट्स भी चलेगा यार, बस स्टार्ट तो करो. तुम इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करना योगा नहीं होता बेटा. लकी कलर इज मिंट, लकी नंबर इज 4. पाइसीज यानी कि मीन राशि, ओवरऑल वेलबींग का ध्यान रखो, स्पेशली बिकॉज डोमेस्टिक एंड फैमिली मैटर्स में शिफ्ट अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है. घर का ग्रुप चैट एक्टिव हो सकता है, मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ. लकी कलर इज सी ग्रीन, लकी नंबर इज 21. एंड दैट्स योर राशि जोन फॉर टुडे. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, कीपिंग योर मॉर्निंग्स मिर्चीदार. अगर मेरा बोलना तुम्हें पसंद आ रहा है तो फॉलो मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
6: बेटे के लिए justice चाहिए।
7: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
5: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Ahlawat and many others.
8: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
5: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
8: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
5: Released by Zee Studios nationwide.
9: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
10: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
9: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
10: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
11: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे मिर्ची मॉर्निंग्स, और जानने का टाइम आ चुका है बिल्कुल नजदीक। While मिर्ची मॉर्निंग्स इज रैपिंग अप, जाते जाते तुम्हें एक बॉलीवुड से सो कॉल्ड कर्ज टाइटल के बारे में बताती हूँ, जिसका नाम है कर्ज। या कर्ज कर्स्ड था, बिकॉज ओवर फोर डेकेड्स 9 फिल्म्स कैरियिंग द नेम कर्ज, KARZ, हैव रिपोर्टेडली फ्लॉप्ड। द ओजी वाज सुभाष घई'स 1980 क्लासिक कर्ज, स्टारिंग ऋषि कपूर जी, एंड द फिल्म डिडंट वर्क इनिशियली एंड रिपोर्टेडली लेफ्ट ऋषि कपूर डीपली डिसअपॉइंटेड। देन केम हिमेश रेशमिया'स कर्ज विद 4 Z's, यस। Apparently, 1Z wasn't enough warning for him, and that film failure was reportedly followed by serious financial trouble for its makers. And then there is Urmila Matondkar, who wasn't seen in a major film for some time after Kurz with 4 Z's. The last film with Kurz in the title came out about a decade ago. So, Bollywood producers, if you're thinking of reviewing the franchise, bas bhai, naam change kar lo aur aisi films mat banao jinke naam mein Kurz ho, kyunki wo tumhe Kurz kar रहा है। एंड दैट्स वेयर मैं यहाँ से क्रूज करने वाली हूँ, होपफुली। वाओ, तो जाते जाते तुम्हें ये तो याद दिला दूँ कि तुमने मुझे फॉलो नहीं किया अभी तक। क्या कर रहे हो यार, आर यू माई फ्रेंड और नॉट? फॉलो करो जल्दी से जाके मुझे इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर भी नोट कर लो, 9033647244। एंड अभी के लिए यू हैव अ ग्रेट डे, टाटा बाय बाय फ्रॉम मी, बोले तो प्रिसिला, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

जर्नी इसी डिफरेंस को ब्यूटीफुली डिफाइन करती है। किस्सा जैसी फिल्म से लेकर मंटो, दिल्ली क्राइम और मिर्जापुर तक उन्होंने बार बार ऐसे कैरेक्टर्स चूज किए जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। खुद रसिका ने भी कहा है कि मंटो ने उन्हें एक डिफिकल्ट करियर फेज से बाहर निकाला और मिर्जापुर एंड दिल्ली क्राइम ने उन्हें एक वक्त में ही कम्प्लीटली डिफरेंट शेड्स एक्सप्लोर करने का मौका दिया। और अब उनकी अपकमिंग फिल्म लिटिल थॉमस के लिए उनकी प्रेप के बारे में बात करते हैं, जिसमें वो जेसी मिरांडा नाम के कैरेक्टर को प्ले कर रही हैं, हु इज डीपली कनेक्टेड विद म्यूजिक, जिसके लिए रसिका ने बजाते पियानो क्लासेस लिए हैं, नॉट फॉर अ डे और अ वीक बट 4 महीनों के लिए, जहां उन्होंने मोजार्ट, शूमन और चोपैन की कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशंस की प्रैक्टिस की। और क्योंकि उसी वक्त वो एक हॉरर शो की शूटिंग भी कर रही थी, तो उस शूट पे वो अपना पोर्टेबल कीबोर्ड साथ लेकर जाती थी और टेक्स के बीच में प्रैक्टिस किया करती थी। और शायद यही रसिका के करियर की सबसे इंटरेस्टिंग थ्रेड है। रोल छोटा हो या आइकॉनिक, कैरेक्टर फेमिलियर हो या बिल्कुल अनफेमिलियर, वो उसके अंदर घुसने के लिए कुछ नया सीखने को रेडी रहती हैं। और शायद इसीलिए उनके कैरेक्टर स्क्रीन पर एक्टेड नहीं, लिव्ड इन फील होते हैं। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga.
1: Mirci, burga. Hello.
2: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रिप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए, ठीक है? आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
1: बीप। अरे बोल कौन रहा है
2: सर, ये वाला भेज दें बीप।
1: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
2: अरे भाई रॉन्ग नंबर है ये भेज दें सर बीप।
1: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही रॉन्ग नंबर है।
2: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेज दें सर, ये वाला बीप।
1: अरे बावले हो गए हो क्या
2: सर? एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, या और करोगे बीप।
1: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
2: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं
1: लास्ट। अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
2: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
1: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
2: सर ये वाला ठीक है बीप।
1: अबे पागल, तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
2: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
1: ओ भाई मुझे नहीं भेजना, हाथ जुड़वा ले।
3: ओ भाई मुझे नहीं भेजना, हाथ जुड़वा ले।
2: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
1: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
3: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
2: सेंट सर, ये वाला गया सेंड, ठीक है सर।
1: अरे भाई किसको भेज दिया?
2: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
1: अबे ये क्या कर रही है, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
8: मैं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
9: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
7: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
10: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
7: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinemas 2nd October.
10: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी हिस्सा बाकी है।
7: Releasing nationwide by Zee Studios.
11: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
12: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
13: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
12: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
14: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
15: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
14: Wait, they can see us on Sunday?
15: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
16: This October, witness the peak of entertainment. Festival of Lights, a premier community celebration with artists like Jayashree, Sparsh Shah, Nini Iris, and dance academies like Bolly Moves, Shivalik, Tara Art Academy. Enjoy food, Garba, and one-of-a-kind fireworks on October 3rd at Kennedy Park, Sayreville, from 3 to 9 p.m. Entry and parking is free.
17: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
17: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: Batting to kafi sare karte hain, Virat ek hi hota hai.
19: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
18: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
9: Ise apni jeb mein rakh le Peter, ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
18: Moral of the story, number one sirf ek hi hota hai.
20: Ek hi hota hai.
18: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: कुछ गानों की अपनी ही किस्मत होती है। हम दिल दे चुके सनम, नहीं नहीं इस गाने की नहीं, बट इस फिल्म की जरूर से बात कर रही हूँ, जो रिलीज हुई थी 1999 में, डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली, जिसमें ऐश्वर्या राय, सलमान खान और अजय देवगन लीड रोल्स निभाते नजर आए थे। और इस फिल्म का ये एपिक ट्रैक तो डेफिनेटली याद होगा आपको।
1: तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार।
0: सो ये गाना ना इस मूवी के लिए फाइनलाइज नहीं हुआ था। यस, बेसिकली लिरिसिस्ट महबूब ने ये कहानी सुनाई एक इंटरव्यू में, और उन्होंने बताया कि भाई वो और म्यूजिशियन इस्माइल दरबार साथ में कई गाने क्रिएट करके अपने बैंक में डाल दिया करते थे, एंड तड़प तड़प के वाज वन सच सॉन्ग जो फाइनलाइज हुआ था फॉर अ मूवी नेम्ड दस। इसको डायरेक्ट करने वाले थे लेट मुकुल आनंद जी, बट अनफॉर्चुनेटली 1997 में ही पास्ड अवे एंड द मूवी गॉट शेल्ड, जिसके बाद संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म हम दिल दे चुके सनम के एल्बम का डिस्कशन कर रहे थे, तब इस्माइल दरबार और महबूब का ये गाना उन्होंने सुना, जो उन्हें इतना पसंद आ गया दैट उन्होंने इन दोनों ही आर्टिस्ट को अपनी इस फिल्म के एल्बम के लिए फाइनलाइज कर लिया। तभी मैंने कहा कुछ गाने अपनी अलग ही किस्मत लेकर आते हैं, और बड़े पर्दे पे जो कहानियां हम देखने जाते हैं उसके पीछे ऐसी ही कई छोटी छोटी कहानियां छुपी होती हैं, जो ढूंढकर मैं आप तक लेकर आती हूँ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है.
3: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस.
2: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा. विजिट aimseducation.edu. योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स. RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
5: ये मोह मोह के धागे.
6: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती है.
2: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है. BBSCA presents Monali Thakur Live, एक exquisite evening, a spectacular concert. October 10th, 7:30 PM, Plainfield High School Auditorium. Tickets on Sulekha and Mongobashi SCA.org. Contact 650-305-5624.
7: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ.
8: ਆਈ ਇੰਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ.
9: ਅਰੇ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ.
2: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ. ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈ. ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ. ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ. ਕਾਮ ਅਨੇਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1. ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1.
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
2: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
11: खेलो मगर प्यार से.
12: श्रुति श्रुति
11: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ. वेल, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो फिल्मची गेम खेलने की बात कर रही हूँ. यार बाबू मोशाय, आप कहाँ ही जा रहे हो? नॉटी नॉटी. चलिए दिमाग को वापस लाइए, क्योंकि यहाँ इस गेम में लगाना है ना दिमाग. सो बेसिकली द ड्रिल इज कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति के DMs में जाके अपना नंबर भेजिए, ताकि कॉल करके मैं आपके साथ इस गेम की शुरुआत कर सकूँ. तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है जूली. हेलो. तो जूली जी, कहाँ से बात हो रही है आपसे?
13: अभी तो हम ग्रेटर नोएडा से बात कर रहे हैं.
11: अरे वाह. हम आप क्या पटना, बिहार, झारखंड?
13: पटना.
11: अरे रे, हम लोग तो एक ही शहर के निकले जी. तो क्या गेम शुरू करने के लिए तैयार हैं आप?
13: हाँ, हम तैयार हैं.
11: बहुत बढ़िया. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, मुंबई की बारिश में हीरो टेलीफोन बूथ पे पापा से बात कर रहा है और सामने दिखती है हीरोइन बच्चों के साथ बारिश में मस्ती करती हुई.
13: दिया मिर्जा.
11: ओहो, कौन सी फिल्म है, नाम बताइए.
13: रहना है तेरे दिल में.
11: क्या बात है. तो रहना है तेरे दिल में रीना से उसका नकली फियांसे बनके कौन मिलता है?
13: माधवन.
11: आर माधवन लड़कियों का वशीकरण किस फिल्म में करते हैं?
13: शैतान.
11: बहुत बढ़िया. शैतान में ज्योतिका के हस्बैंड कौन है?
13: अजय देवगन.
11: अजय देवगन की फिल्म जिसमें वो सरदार जी बने हैं?
13: सन ऑफ सरदार.
11: सन ऑफ सरदार में संजय दत्त की बहन कौन है?
13: संजय दत्त की बहन ये है सोनाक्षी सिन्हा.
11: सोनाक्षी सिन्हा को थप्पड़ से डर किस फिल्म में नहीं लगता?
13: दबंग.
11: दबंग में रॉबिन हुड पांडे कौन है?
13: सलमान खान.
11: क्या बात. सलमान खान दीवाना बनके अपनी ओ ओ जाने जाना को किस फिल्म में ढूंढते हैं?
13: प्यार किया तो डरे.
11: ओहो लड़की, एकदम फिल्मी कीड़ा जाग रहा है. प्यार किया तो डरना क्या में अरबाज खान की बहन कौन है?
13: काजोल.
11: काजोल को अपने बेस्टी से किस फिल्म में प्यार होता है?
13: कुछ कुछ होता है
11: में अंजलि के पापा कौन है, मतलब छोटी वाली अंजलि?
13: शाहरुख खान.
11: शाहरुख खान 6 दिन में लड़की बटाने का टेक्निक किस फिल्म में बताते हैं?
13: बादशाह.
11: यहाँ आप गलत हो गई. आपने जो इस गेम में गर्दा उड़ाया है, जो ताबड़तोड़ आपने फिल्मचीपना दिखाया है, मजा ही आ गया बहुत.
13: मेरे को भी आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है.
11: जूलिया
13: I love you.
11: क्या बात है. तो भाई हमारी इस बिहारी बाला ने तो गजब का समा बांध दिया, जिसके लिए इनको ये टैग देना तो बनता है.
14: मिर्ची फिल्मची.
11: और अगर फिलहाल आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा भी जाग रहा है तो जगाइए जगाइए और मिर्ची श्रुति से इंस्टा पे जरूर मिलिए. Till then, stay tuned, it's hot.
14: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
4: I am not going to bed with you ever again.
3: But why? What did I do?
4: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
3: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
4: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
3: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
4: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
5: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Khelo magar pyar se.
11: Shruti, Shruti, Shruti.
10: Main to badi film hu.
12: Dekho, ab tak to aapko samajh mein aa hi gaya hoga that main Mirchi film ki game ki baat kar rahi hu, jiski shuruaat aaj humne ki thi Julie Man se. But she got stuck at a point aur uske aage गेम खेलने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है रानू। हेलो जी मैम, कैसी हैं आप और कहाँ से बात हो रही है?
13: हैदराबाद से।
12: ओ वाओ, तो रानू हमारा गेम जहाँ अटका था, क्या उसके आगे का गेम आप कंटिन्यू करना चाहोगे?
13: यस यस, प्लीज गो अहेड।
12: ऑलराइट, सो द क्वेश्चन दैट शी गॉट स्टक ऑन वाज, शाहरुख खान 6 दिनों में लड़की पटाने का टेक्निक किस फिल्म में बताते हैं?
13: कल होना हो
12: में नैना का मेल बेस्ट फ्रेंड कौन है?
13: सैफ अली खान
12: एक पैशनेट म्यूजिशियन, ट्रेन पे कस्तो मजा है ले लईबा किस फिल्म में करते हैं?
13: परिणीता
12: में बचपन से सैफ अली खान से किसको प्यार है?
13: विद्या बालन
12: को जिंदगी में एंटरटेनमेंट किस फिल्म में पसंद है?
13: डर्टी पिक्चर
12: में प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है?
13: इमरान हाशमी।
12: यस, इमरान हाशमी की किस गैंगस्टर फिल्म का सेकंड पार्ट आ रहा है?
13: आवारापन।
12: यस, और ये जो पूरी फैमिली ने मिलकर साथ में गेम खेला है, एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए, आई रियली लाइक इट।
13: थैंक यू। एक्चुअली हम लोग सारे एक ही रूम में हैं, माय डॉटर इज जस्ट 6 इयर्स ओल्ड।
12: ओके,
13: सो शी इज प्रॉम्प्टिंग व्हाटएवर आई एम सेइंग, शी इज प्रॉम्प्टिंग।
12: ओह,
13: एंड टुडे इज आवर 8th एनिवर्सरी, दैट इज व्हाई माय हस्बैंड इज जस्ट नियर मी।
12: ओह माय गॉड, दैट इज सो स्वीट। विश यू बोथ अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी।
13: Thank you so much.
12: It was so lovely talking to you, ma'am. And of course, the way you have ended the game is amazing. तो इसी बात पे आपको ये टैग तो जरूर दूंगी मैं।
11: मिर्ची, फिल्मची।
12: तो बाबू मोशाय, अगर आज का ये मिर्ची फिल्म ची गेम आपसे मिस हो गया, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, मिर्ची श्रुति के फेसबुक या इंस्टा पे जाके अपना नंबर डीएम कीजिए एंड रेस्ट आई टेक केयर ऑफ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।
14: यू आर लिसनिंग टू 103.3 एफएम HD2 WPRB प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इन फिल्मों में हीरोइंस को बचाया नहीं जाता, दे फाइट बैक एंड राइट देयर ओन स्टोरी।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और यार, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ना गिने चुनी ही ऐसी फिल्में हैं, और इसलिए मैंने सोचा आज पांच का पंच के लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही फेमिनिस्ट फिल्मों की बात करूं जहां वुमेन एक्चुअली टुक कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ एंड फॉट बैक। लिस्ट में सबसे पहले वील टॉक अबाउट सिस्टर मिडनाइट, नंबर दो पे NH10, नंबर तीन पे मॉम, नंबर चार पे बुलबुल एंड नंबर पांच पे नो वन किल्ड जेसिका। तो शुरू करते हैं करण खंडारी डायरेक्टोरियल सिस्टर मिडनाइट से, जो 2024 में रिलीज हुई थी, स्टारिंग राधिका आप्टे एज

उमा जो एक अनकन्वेंशनल वुमन है हु रिफ्यूजेस टू फिट इनटू द मोल्ड ऑफ अ ट्रेडिशनल हाउसवाइफ। देखो हमें भी पता है कि शादी के बाद हैप्पीली एवर आफ्टर जरूरी नहीं कि हैप्पी ही हो। एंड सिस्टर मिडनाइट में राधिका आप्टे की उमा एक अरेंज्ड मैरिज में फंस जाती है, लेकिन वो एक ट्रेडिशनल सबमिसिव वाइफ बनने को रेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी और क्वर्की स्टोरी टेलिंग के थ्रू ये फिल्म एक वुमन के रिबेलियन, फ्रस्ट्रेशन और फ्रीडम की सर्च को एक्सप्लोर करती है। ऑल्दो हो सकता है कि आधे से ज्यादा लोगों को इस मूवी की स्टोरी टेलिंग समझ में ही नहीं आ पाए, बट लेट मी टेल यू, इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था 2024 के कैंस डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में, तो आप समझ ही सकते हैं कि किस इंटेंसिटी की मूवी है ये। तो अगर आप एक मर्द हैं और अपने अंदर के फेमिनिज्म को थोड़ा स्ट्रांग करना चाहते हैं, देन डू वॉच द मूवी। बाकी की चार फिल्मों की डिस्कशन सबसे कुछ ही देर में होगी। राइट हियर ऑन मिर्ची, मैं हूं आपके साथ श्रुति। इट्स ऑन।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Ya bana. Burga, burga. La firma la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Mr. Kumar.
1: Yeah.
2: Hello, sir. How are you?
1: Fine, fine, fine.
2: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
1: नहीं, आप बता दो।
2: हाँ, तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
1: रिगार्डिंग व्हाट?
2: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
1: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
2: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
1: हाँ
2: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए मेरे को।
1: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
2: सैटरडे 4 बजे सर, वो साढ़े 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर, सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
1: हाँ मिलते हैं।
2: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे सर। कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
1: देखो यार, मैं मंडे ट्यूसडे मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूसडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे।
2: मैं ट्यूसडे किसे कितने बजे सर, ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
1: 7 बजे
2: सर। मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
1: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
2: सर संडे कितने बजे?
1: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
2: सर संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं, वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
1: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: 9 nights, 1 divine spirit.
7: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscataway Way.
6: Join daily Garba, October 11th to 19th at 7 p.m.
7: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th and Sharat Purnima Garba on the 25th.
6: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
9: मेक योर चाइल्ड्स पार्टी अनफॉरगेटेबल दिस ईयर, कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स फ्रॉम स्लाइम टू क्राफ्ट्स, ऑल डिजाइंड अराउंड योर चाइल्ड्स एज एंड थीम, एंड ऑफ कोर्स पिज्जा, पॉपकॉर्न एंड अनलिमिटेड फन। विजिट द craftyhands.com और कॉल 732-397-0057।
10: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Healthcare में एक successful career की तरफ आपके हर कदम पर AIIMS College of Health Sciences हमेशा आपके साथ है.
14: Choose career focused certificate and degree programs in MRI, ultrasound, cardiovascular, neurodiagnostic, anesthesia, surgical technology or many more with hands-on clinical experience.
13: AIIMS Education is now welcoming international students and offering I-20 to eligible international students pursuing an F-1 student visa. Visit aimseducation.edu. Your healthcare future starts with AIIMS.
15: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
16: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।

0: from a damsel in distress to a powerful queen.
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइनों का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन होता है, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि अक्सर हमने हमारे हीरोइंस को प्यार करते, रोते और हीरो का इंतजार करते तो बहुत देखा है। लेकिन जब ये हीरोइंस खुद सवाल करती हैं, सिस्टम से लड़ती हैं और जरूरत पड़ने पर रिवेंज भी लेती हैं, तब कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और आज मेरे पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं ऐसी ही कुछ पांच फेमिनिस्ट फिल्मों की बात कर रही हूँ जिसमें द फीमेल प्रोटैगनिस्ट टुक द सेंटर स्टेज। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी सिस्टम मिडनाइट। अब नंबर दो पे बात करते हैं NH10 के बारे में, जो रिलीज हुई थी साल 2015 में। नवदीप सिंह की हार्ड हिटिंग थ्रिलर स्टारिंग अनुष्का शर्मा एंड नील भूपलम। माइंड यू, इस फिल्म को अनुष्का ने प्रोड्यूस भी किया था, दस मेकिंग हर प्रोडक्शन डेब्यू एज वेल। कहानी एक रोड ट्रिप की जो अचानक से टेरिफाइंग नाइटमेयर बन जाता है। NH10 में अनुष्का शर्मा एज मीरा एक वायलेंट इंसिडेंट के बाद सर्वाइवल के लिए फाइट करती हैं। ये फिल्म ऑनर किलिंग, पेट्रियार्की और रूरल पावर स्ट्रक्चर्स को ब्रूटली एक्सप्लोर करती है, जहां मीरा का कैरेक्टर विक्टिम बन के रुकता नहीं बट फाइट बैक करता है। चलो लिस्ट में नंबर तीन पे अब बात करना चाहूंगी अबाउट द फिल्म मॉम, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय रवि उदयावर, विच इज अ रिवेंज थ्रिलर स्टारिंग श्रीदेवी मैम, सजल अली, अक्षय खन्ना एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी। माइंड यू, ये फिल्म श्रीदेवी मैम की 300th फिल्म थी और इसी के साथ उन्होंने अपनी सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत की थी इन दी इंडस्ट्री। कहानी का बैकड्रॉप फेल जस्टिस सिस्टम को दिखाता है, जब इन सारी चीजों से परेशान होके एक माँ खुद जस्टिस बन जाती है। फिल्म मॉम में श्रीदेवी अपनी स्टेप डॉटर के सेक्सुअल असॉल्ट के बाद उन गुनहगारों को सजा दिलाने के मिशन पर निकलती हैं। इन शॉर्ट, फिल्म का कोर है अ मदर्स लव, रेज एंड फाइट फॉर जस्टिस। तो बाबू मोशाय, अगर आपने ये फिल्में नहीं देखी, देन डेफिनेटली यू शुड पुट इट इन योर वॉच लिस्ट। एंड टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, अपने आसपास के मर्दों को स्पेसिफिकली ये फिल्में जरूर दिखाएं। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और अब से कुछ ही देर में ऐसी ही दो और फिल्मों की बातें होंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती हैं।
3: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है। BBSCA presents मोनाली ठाकुर लाइव, एक एक्सक्विजिट इवनिंग, अ स्पेक्टेकुलर कॉन्सर्ट, अक्टूबर 10, 7:30 PM, प्लेनफील्ड हाई स्कूल ऑडिटोरियम। टिकट्स ऑन सुलेखा एंड mongobashi.sca.org। कॉन्टैक्ट 6503055624।
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
3: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26+ DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम। साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन। विजिट द craftyhands.com और कॉल 7323970057।
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
5: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: जब एक औरत के साथ injustice हो तो उसको क्या करना चाहिए?
11: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
10: Of course, आप बोलेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना चाहिए, उसको एक प्रॉपर रूट लेना चाहिए टू गेट जस्टिस। बट अगर जस्टिस सिस्टम ही उसको फेल करती जाए तो फिर क्या? क्या वो चुप रहेगी, सिस्टम का वेट करेगी, या खुद अपनी जस्टिस की फाइट लड़ेगी? वेल, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने इस सवाल का जवाब हमें कई पावरफुल थ्रिलर्स के जरिए दिया है। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही फेमिनिस्ट फिल्मों की बात कर रही हूँ जहाँ द फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स टुक द सेंटर स्टेज। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट सिस्टम मिडनाइट, उसके बाद NH10, देन मॉम, और अब बारी है टू टॉक अबाउट द मूवी बुलबुल। साल 2020 में अन्विता द डायरेक्टोरियल ये गॉथिक पीरियड हॉरर फिल्म आई, स्टारिंग तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी एंड राहुल बोस एज लीड्स। सेट इन द 1880s बंगाल, बुलबुल नाम की एक चाइल्ड ब्राइड एक ओप्रेसिव वर्ल्ड में ग्रो करती है और इवेंचुअली अपनी एजेंसी और पावर रिक्लेम करती है। वैसे फिल्म की डायरेक्टर साहिबा ने इसको एक फेमिनिस्ट फेरी टेल भी कहा था, जहां सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के थ्रू एक औरत के पेन और रेश को एक्सप्लोर किया गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब नंबर 5 पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म नो वन किल्ड जेसिका, जो साल 2011 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय राजकुमार गुप्ता। इसमें विद्या बालन, रानी मुखर्जी और मायरा कर्ण लीड रोल्स में थे। सो एक मर्डर हुआ जिसके विटनेसेस थे, एविडेंस भी था, फिर भी जस्टिस इतना डिफिकल्ट क्यों था? वेल, नो वन किल्ड जेसिका जेसिका लाल मर्डर केस से इंस्पायर्ड क्राइम थ्रिलर है, जहां विद्या बालन प्लेज जेसिका सिस्टर सबरीना लाल, वहीं रानी मुखर्जी ने जर्नलिस्ट मीरा गेटी का रोल प्ले किया है। फिल्म में मीडिया पावर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और जस्टिस सिस्टम के फेलियर्स को हाईलाइट किया गया है, एंड इट शोज हाउ अ वुमन्स फाइट कैन बिकम अ पब्लिक मूवमेंट। तो मेरे फेमिनिस्ट फिल्मों वाली पांच का पंच की लिस्ट में इतना ही। बाकी आप कोई ऐसी ही फिल्म इस लिस्ट में ऐड करना चाहें, देन फील फ्री टू डू दैट मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
12: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels, best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
3: अपने बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
4: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
2: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaideep Ahlawat, and many others.
5: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
2: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
5: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है.
2: Released by Zee Studios nationwide.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
7: हिंदी सिनेमा की पहली पैट कॉम.
8: श्रुति श्रुति
9: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
7: ओके, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी एक्सप्लेन. पैट कॉम का मतलब होता है पेट्रियोटिक कॉमेडी, और हिंदी सिनेमा की तरफ से ये पहली बार हो रहा है कि कोई पेट्रियोटिक कॉमेडी आ रही है. एंड द नेम ऑफ द मूवी इज उड़ता तीर बाबू मोशाय, जिसका ट्रेलर इज योर. एंड भाई साहब, क्या ही बवाल ट्रेलर काटा है. रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आकाश कौशिक. इस फिल्म की स्टारकास्ट एक अलग ही वाइब है. आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, मुकुल देव, राम कपूर, गुलशन ग्रोवर, राहुल बोस, सुहेल नायर, ब्रिजेंद्र काला, मतलब ऐसे ऐसे एक्टर्स जिनको आपने इनके क्राफ्ट के लिए कई बार अप्रिशिएट किया होगा. एंड कहानी का बैकड्रॉप अगर आपको बताऊं तो भाई, एक पाकिस्तानी स्पाई है जो एक टॉप सीक्रेट मिशन के लिए इंडिया भेजा जाता है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि भाई उसकी याददाश्त ही चली जाती है और वो बन जाता है भारत का अल्टीमेट लेवल देशभक्त. और इस चक्कर में जो ह्यूमन क्राई क्रिएट होता है, जो सिचुएशनल कॉमेडी आती है, वो आपको ट्रेलर में जब इस लेवल पे गुदगुदा रही है, हंसा रही है, देन आई एम 110% श्योर कि 9th ऑफ अक्टूबर को जब ये फिल्म थिएटर्स में आएगी तो बवाल ही काट डालेगी. बाकी आपके क्या ओवरव्यूज हैं अबाउट दिस पैट कॉमेडी, डू लेट मी नो अबाउट दैट. मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.
10: यू आर लिसनिंग टू 103.3 एफएम HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी. रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ये दोनों एक्टर्स ना ऑलरेडी साउथ में बहुत बड़े स्टार्स थे, लेकिन उन्हें लगता था कि शायद हिंदी इंडस्ट्री में वो इतना बड़ा मार्क नहीं बना पाएंगे। पुरानी जींस में हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया। और आज मैं जिस फिल्म की बात कर रही हूँ ना, वो फिल्म मैं एक्चुअली मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि उस फिल्म को देखने के बाद ना, वो कहते हैं हैंगओवर होता है, एक्चुअली मैं इस फिल्म को देखने के बाद ना मेरा मूड ऑफ होता है। तो जब भी ये फिल्म बहुत सारे यू नो चैनल्स पे आती रहती है, आई ट्राई नॉट टू वॉच दिस मास्टरपीस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सदमा। कमल हसन और श्रीदेवी जी ऑलरेडी साउथ के बहुत बड़े एक्टर्स थे, लेकिन हिंदी फिल्म में दोनों ने एक साथ पहली बार इसी फिल्म से काम किया था। आज इसी फिल्म की बातें होंगी श्रेया के साथ, एंड ऑफ कोर्स सदमा के बहुत खूबसूरत गाने। तो बस कहीं भी मत जाना, कम बैक राइट हियर ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सका बाना
3: बाना
2: मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो,
5: हेलो डॉक्टर सविता से बात करा दिए।
4: तो सविता बोल रही हूँ।
5: डॉक्टर ये तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता, तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
4: क्या परेशानी है?
5: ना एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता है।
4: तो वो तो भरता ही है।
5: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
4: अच्छा,
5: ये बुढ़ापे में हो गया ना। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
4: हाँ हाँ।
5: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
4: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
5: प्रॉब्लम में आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
4: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
5: नहीं,
4: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
5: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
4: अच्छा।
5: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
4: अच्छा, कभी लेकिन ना मैं समझ रही हूँ।
5: हाँ, क्या समझ रही
4: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से। मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
5: डॉक्टर सविता।
4: हाँ जी,
6: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही
4: हूँ।
6: देखा, मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। थोड़ा सा
4: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
6: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
4: कुकड़ू को।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
8: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
9: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
10: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
11: नहीं बेटे, के लिए जस्टिस चाहिए।
12: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
10: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar, and many more.
13: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
10: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
13: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
10: Releasing nationwide by Zee Studios.
14: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
15: मेक योर चाइल्ड्स पार्टी अनफॉरगेटेबल दिस ईयर। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स फ्रॉम स्लाइम टू क्राफ्ट्स, ऑल डिजाइंड अराउंड योर चाइल्ड्स एज एंड थीम, एंड ऑफ कोर्स पिज्जा, पॉपकॉर्न एंड अनलिमिटेड फन। विजिट द craftyhands.com or call 732-397-0057.
16: It's 2 AM. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
17: Don't worry, I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
16: Wait, they can see us on Sunday?
17: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
18: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
19: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
18: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
19: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: लगा
1: लगा
0: लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई।
1: प्यार की मिला तेरे स्नेह बात हो गई।
0: ओहो, ओहो, ओहो, ओहो, ओहो।

गुलशन ग्रोवर तो फिल्म की सिर्फ शूटिंग देखने गए थे, उन्हें क्या पता था कि उन्हें इस फिल्म का इतना इम्पोर्टेंट रोल भी मिल जाएगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज बात हो रही है फिल्म सदमा की। एक ऐसी फिल्म जिसका क्लाइमैक्स देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी फिल्म जिसको मैं ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है मैं देख नहीं पाती हूँ। मतलब मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स देख करके ना मेरा मूड एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज खराब रहेगा। हाँ जी, सो सदमा में गुलशन ग्रोवर विलन का रोल करते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनको कभी इस रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया था। ये तो बाय एक्सीडेंट था कि उनको ये रोल मिल गया। अब हुआ ये कि अनिल कपूर ऑलरेडी एक कन्नड़ मूवी के लिए शूटिंग कर रहे होते हैं और सदमा की शूटिंग ना वहीं कहीं उनके ही सेट के आसपास होती है। तो अनिल कपूर श्रीदेवी से मिलने चले गए थे वहां पर। जब वहां गए तो भाई फिल्म के जो कैमरामैन थे जिनका नाम था बालू महेंद्र, उन्होंने गुलशन ग्रोवर को देख करके अनिल कपूर से कहा कि अपने दोस्त से पूछो क्या वो इस फिल्म में विलेन का रोल करेगा। और सोचिए, अनिल कपूर ने जैसे ही पूछा, गुलशन ग्रोवर तो उस समय उनके पास खास काम नहीं था, उन्होंने झट से हाँ कह दी, एंड दैट वॉज हाउ ही लैंडेड इन द रोल। पुरानी जीन्स पे सदमा के गाने होंगे और सदमा की बातें विद मी श्रेया। कम बैक राइट हियर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: This October, witness the peak of entertainment. Festival of Lights, a premier community celebration with artists like Jayashree, Sparsh Shah, Nini Iris and dance academies like Molly Moves, Shivalik, Tara Art Academy. Enjoy food, garba and one-of-a-kind fireworks on October 3rd at Kennedy Park, Sayreville from 3 to 9 p.m. Entry and parking is free.
4: Sona kharidne ke soch rahe hain? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price bar jaye, gold bars kharide wholesale price pe only at RK Jewels. RK Jewels, best quality, best price.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
7: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
8: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
9: मुझे जस्टिस नहीं बदला चाहिए।
7: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
10: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
7: द एंड वी've बीन वेटिंग फॉर दृश्यम द कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर।
10: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
7: रिलीजिंग नेशन वाइड बाय जी स्टूडियोज।
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
12: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
13: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
14: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
12: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमरखोल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट maitriusa.org।
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
16: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
15: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
15: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

यही फिल्म कमल हसन और श्रीदेवी जी ने पहले तमिल में की थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। सो ओरिजिनली दिस फिल्म वाज मेड इन तमिल, उसके बाद इसको हिंदी वर्जन में बनाया गया, टेकिंग अगेन द सेम एक्टर्स श्रीदेवी एंड कमल हसन। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा। लेकिन आपको पता है, हिंदी वर्जन बनाते समय श्रीदेवी काफी नाराज थी, और वो भी खुद से। उनको लगा कि तमिल वर्जन में ना वो और कमल हसन बहुत सारे सीन्स को इम्प्रूव कर पा रहे थे बिकॉज दे अंडरस्टूड द लैंग्वेज, लेकिन हिंदी क्योंकि श्रीदेवी की मदर टंग नहीं थी, उनको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रही थी, तो श्रीदेवी सेट कि हम बहुत सारे सीन्स को ना इम्प्रोवाइज नहीं कर पाए, जैसे डायरेक्टर बोलते गए हम बस वही करते गए। लेकिन अगर जैसा डायरेक्टर ने कहा सिर्फ उतना किया तो भी क्या खूबसूरत किया। सदमा रिमेन्स वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म ऑफ श्रीदेवी जी। मतलब इस फिल्म के बाद ना, अगर आप जब ये फिल्म देख लोगे तो आपको लगेगा कि श्रीदेवी कितनी मंझी हुई कलाकार थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, इस फिल्म की बातें और गाने चलते रहेंगे। सो डोंट यू गो एनीवेयर, कम बैक राइट हियर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइड Store.
5: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
6: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
5: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
7: Tera kya hoga, Kalia?
8: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
7: Ab, mirchi kha.
9: Radio Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

द डर्टी पिक्चर विद्या बालन की याद है आपको, ये किस पे बनी थी? साउथ की सेंसेशनल एक्ट्रेस विद्या बालन पे। अब ये साउथ की एक्ट्रेस यानी सिल्क स्मिता उस टाइम पे एक्सट्रीमली पॉपुलर थी और क्राउड भर भर के जाता था सिनेमा हॉल में इनकी फिल्में देखने के लिए। तो भाई जब हिंदी फिल्म बना रहे थे डायरेक्टर बालू महेंद्र, तो उनको लगा कि उन्हें अब सिल्क स्मिता को ना हिंदी फिल्मों वालों से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, हिंदी फिल्म ऑडियंस को भी दिखाना चाहिए। तो ही वॉन्टेड टू शो समथिंग सेंसेशनल बिटवीन द यू नो स्टोरी ऑफ कमल हासन एंड श्रीदेवी जी। सो उन्होंने ना साउथ की इंडस्ट्री की ये फैसिनेटिंग यंग गर्ल सिल्क स्मिता को लेकर के आए। सो इनका तमिल वर्जन वाली जो फिल्म थी उसमें तो बहुत ही अच्छा काम किया, और उसके बाद हिंदी फिल्म में जब वो लेकर के आए, दैट वाज हर इंट्रोडक्शन, सिल्क स्मिता का इंट्रोडक्शन टू हिंदी ऑडियंस। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, वापस सब।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: दफावाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप?
2: ये

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया. म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए. रेडी 1 2 3 4

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Burka, burka. La fiesta la burka.
2: Mirchi, burka.
3: Hello.
4: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ। सर, ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा, जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना, वो रीप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए, चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए। ठीक है, आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
3: बीप। अरे बोल कौन रहा है?
5: अरे बोल कौन रहा है?
4: सर ये वाला भेज दें बीप।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
5: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
4: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर बीप।
3: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
5: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
4: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजना सर, ये वाला बीप।
3: अरे बावले हो गए हो क्या?

0: अरे बावले हो गए हो क्या?
1: सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, ये और करोगे बीप।
2: अबे पागलों नहीं भेजना मुझे कुछ।
0: अबे पागलों नहीं भेजना मुझे कुछ।
1: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं
2: लास्ट। ओ भाई अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
0: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
1: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए।
2: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
0: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
1: सर ये वाला ठीक है बीप।
2: अबे पागल ले ले, तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
0: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
1: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
2: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
0: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
1: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
2: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
0: अबे नहीं भेजना तेरे में बुद्धि कम है।
1: सेंट सर ये वाला गया सेंड, ठीक है सर।
2: अरे भाई किसको भेज दिया?
1: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
2: अबे ओ पागल ये क्या कर रही है, मेरी नौकरी चली जाएगी तेरे को, समझ नहीं आता क्या?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
7: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
8: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
6: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaideep Ahlawat and many others.
9: इस बार खतरा कब कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
6: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
9: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
6: Released by Z Studios Nationwide.
10: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आर के ज्वेल्स। आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
11: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
11: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
13: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
14: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
15: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
16: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
17: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
18: October 24th and 25th, Hammerhold Upper Elementary School, East Brunswick, New Jersey. Register today at my3usa.org.
19: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप उस श्रेया के साथ, और जब बात हो फिल्म सदमा की तो ना एक जगह चुप हो जाना चाहिए क्योंकि गाना ये आ रहा है। एंड इस गाने से, यानी इस फिल्म के गानों से इलैयाराजा जी ने अपना डेब्यू किया था, और उनके असिस्टेंट पता है कौन थे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इट वाज नन अदर देन एआर रहमान साहब। इतना खूबसूरत गाना ये सुदास जी ने गाया। कमिंग अवर राइट नेक्स्ट सुरमई अखियों, ये गाना जो है श्रीदेवी को देख करके कमल हसन गाते हैं, और श्रीदेवी के चेहरे पे इतना इनोसेंस। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये गाना शुरुआत से इन्जॉय करो। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
3: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
4: दिस अक्टूबर विटनेस द पीक ऑफ एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, अ प्रीमियर कम्युनिटी सेलिब्रेशन विद आर्टिस्ट्स लाइक जयश्री, स्पर्श शाह, नीनी आयरिस एंड डांस अकेडमीज लाइक बॉली मूव्स, शिवालिक, तारा आर्ट अकेडमी. एंजॉय फूड, गरबा एंड वन ऑफ अ काइंड फायरवर्क्स ऑन अक्टूबर 3rd एट कैनेडी पार्क, सेयरविल, फ्रॉम 3 to 9 PM. एंट्री एंड पार्किंग इज फ्री.
5: नवरात एकज स्पिरिट
6: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथी लावी रहा छे पिस्काटवे मा
5: रमो गरबा डेली 11 to 19 October सांजे 7 PM थी.
6: तारीख 18 ना रोज 8 यज्ञ, 19 9 यज्ञ अने 25 शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी. विजिट gayatricenter.org टुडे.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
10: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
9: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
11: Isse apni jeb mein rakh le, Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है.
9: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
13: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: बालू महेंद्र ने जब इस फिल्म का क्लाइमैक्स लिखा था तो उन्होंने बहुत सिंपल सा लिखा था कि कमल हासन श्रीदेवी को बस देख रहे हैं, ऐसी आंखों से देख रहे हैं, ऐसे इमोशंस के साथ देख रहे हैं कि बस अब तो मत जाना। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, जिसका क्लाइमैक्स ओ गॉड रोंगटे खड़े कर देता है। और इसीलिए ना जब भी ये फिल्म आती है किसी भी चैनल पे तो मैं देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स तो मुझे 2-3 दिन तक मेरे दिल में एकदम जगह करके रहेगा एंड यू नो आई विल फील वेरी वेरी सैड। सो बालू महेंद्र ने तो कोशिश की थी कि बस कमल हासन सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहे हैं श्रीदेवी को, उनकी आंखों में है कि तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाओ, और श्रीदेवी चलती जा रही है। लेकिन इट वॉज कमल हासन हू सेड कि नहीं, ऑडियंसेस के लिए ये सिर्फ एक ग्लिम्स, एक एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ और होना चाहिए। एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन कमल हासन सेड कि मैं इस रोल, इस पूरे सीन को ना इम्प्रोवाइज करना चाहता हूँ। तो जो वो ट्रेन में बैठी हैं श्रीदेवी और कमल हासन उनको उछल उछल के दिखा रहे हैं कि शैतानियाँ हम लोग करते थे, ये मस्ती हम लोग करते थे, और श्रीदेवी उनको यू नो कुछ खाने को देती हैं कि अरे भाई लगता है यू नो ही इज़ लॉस्ट हिज माइंड, इसको कुछ खाने को दे दें, ये सब कमल हासन ने सोचा था। और ये ऐसा सीन निकला जिसकी वजह से ये फिल्म आज तक जानी जाती है। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, बस कहीं भी मत जाना।
1: ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
5: मेरे बेटे के लिए justice चाहिए।
6: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
4: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
7: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
4: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
7: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी हिस्सा बाकी है।
4: Releasing nationwide by Zee Studios.
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानी।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलन।
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
12: अब मिर्ची खा।
14: Radio Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिर से वो टाइम आ गया जब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बिकॉज अगला गाना इज़ अ कल्ट सॉन्ग। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ सदमा की बात हो रही है, तो वो गाना ना हो जो जब भी हम थोड़ा सा डगमगाते हैं या ज़िंदगी से नाराज़ होते हैं, निराश होते हैं, तो ये गाना सबसे पहले जहन में आता है। सुरेश वाडकर की आवाज़ है, इलिया राजा की कॉम्पोजिशन है और गुलजार साहब ने लिखा था ये। यही गाना तमिल में, यानी जब ये फिल्म तमिल में बनी थी ओरिजिनली, तो ये तमिल की फिल्म थी जिसको हिंदी में फिर से बनाया गया था। यही गाना था पुंगात्रु पुथी नाथु, कुछ ऐसे करके, मैं ठीक से शायद प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला, ए जिंदगी गले लगा ले। कौन लिख सकता था ये गुलजार साहब के अलावा, कि हमने भी तेरे हर गम को गले से लगाया। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಜೋಡಗನ ಜೇ.

श्रीदेवी की सारी फिल्मों में से सबसे बेहतरीन मानी जाती है सदमा फॉर हर एक्टिंग स्किल्स। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और जैसे दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे ही रोल रोल पे लिखा होता है एक्टर का नाम। एक्चुअली मैं ये रोल पहले करने वाली थी डिम्पल कपाटिया, बट एट दैट टाइम उनके पास ना बल्क में डेट्स नहीं थी इस फिल्म को देने के लिए। दो शी वॉन्टेड टू डू द फिल्म बिकॉज उनको स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, तो उनको ना उस समय सागर के लिए रोप इन किया हुआ था सिप्पी साहब ने, एंड शी कुड नॉट गिव डेट्स फॉर दिस फिल्म। एंड देन केम श्रीदेवी जी, जिन्होंने इस रोल को चार चांद लगा दिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ये फिल्म ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है ना, आई अवॉइड सीइंग दिस फिल्म, क्योंकि सदमा ना आपको एक सदमा दे के जाती है। इसका क्लाइमैक्स आपके साथ रहता है फॉर अ कपल ऑफ डेज। यू कीप थिंकिंग अबाउट द फिल्म, यू कीप थिंकिंग अबाउट कमल हसन, यू कीप थिंकिंग अबाउट श्रीदेवी जी। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें, मैं हूँ श्रेया।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Mr. Kumar.
1: Yeah.
2: Hello, sir. How are you?
1: Fine.
2: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
1: नहीं, आप बता
2: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
1: रिगार्डिंग व्हाट?
2: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
1: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
2: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
1: हाँ
2: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दिए मेरे को।
1: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
2: सैटरडे 4 बजे सर, वो सैटरडे 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर, सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
1: हाँ मिलते हैं।
2: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे। सर कोई और दिन यार टाइम बता दो आप प्लीज।
1: देखो यार मैं मंडे ट्यूसडे मैं मुंबई जा रहा हूँ, ट्यूसडे आप एक काम करो मिल लो मुझे।
2: मैं ट्यूसडे किसे कितने बजे सर, ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
1: 7 बजे
2: सर, मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
1: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
2: सर संडे कितने बजे,
1: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
2: सर संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
1: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले फिर बताइए।
2: अपने ही निकाल।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
6: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
5: Wait, they can see us on Sunday?
6: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
8: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
9: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
7: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
10: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
7: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
10: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
7: Releasing nationwide by Zee Studios.
11: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
12: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
11: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
12: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
11: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
15: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

तमिल में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी इसका नाम था मुंद्रम पिराई, और लोगों का कहना है कि फ्रेम टू फ्रेम सेम फिल्म उठा करके रखी गई इन हिंदी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म सदमा की, जो सबसे पहले तमिल में बनी, उसके बाद इसको हिंदी में बनाया गया। सो अ लॉट ऑफ पीपल से, अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स ऑल्सो से कि ये ना ये रीमेक नाम की कोई चीज ही नहीं थी इसमें, इसमें एज इट इज फ्रेम टू फ्रेम काम कराया था। और इसमें भाई तमिल वर्जन में भी ऑफकोर्स श्रीदेवी और कमल हसन थे, लेकिन हिंदी में किसी हिंदी फिल्म के लिए दोनों एक साथ पहली बार काम कर रहे थे, एंड दैट वॉज सदमा। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें आज श्रेया के साथ होती रहेंगी। इन केस आपको मुझे सदमा के बारे में कुछ बताना है, आई एम श्योर अगर आप रेट्रो फैन हैं आपने ये फिल्म देखी होगी, तो डू शेयर योर फीलिंग्स फेसबुक और इंस्टा पे। माय हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA विद लव।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Oh no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
6: Worried अबाउट हाउ योर चाइल्ड विल स्टे कनेक्टेड विद देयर रूट्स और मेंटेन आवर ट्रेडिशंस?
7: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
6: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Listener MI, back to back gana sunega.
11: Back to back gana sunega.
10: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
12: Ah, hey.
13: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मूवी के मेकर्स का ऐसा सोचना था कि सदमा फिल्म इतनी चलेगी नहीं। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ इस फिल्म ने तमिल वर्जन में तो बहुत कमाल किया था, लेकिन जब इसको हिंदी में बनाया जा रहा था ना, तो सबके डाउट्स थे। डाउट्स इसलिए थे क्योंकि उस टाइम पे 1980s में एक तरफ बच्चन साहब की एक्शन फिल्में आ रही थी, दूसरी तरफ काका की रोमांटिक फिल्में आ रही थी, उसके बीच में इतनी इमोशनल फिल्म जिसका इतना डिप्रेसिव एंड हो। सो द मेकर्स थॉट कि भाई फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं करेगी, व्हिच एक्चुअली हैपेंड। भाई बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा क्राउड उस समय नहीं आया, लेकिन हाँ, इस फिल्म ने कल्ट का स्टेटस लिया। एंड स्पेशली आज के दौर में दिस फिल्म इज अ माइलस्टोन दैट एक्चुअली श्रीदेवी जी एंड कमल हसन अचीव्ड। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: ये मोह मोह के धागे।
4: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती है।
5: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है। BBSCA presents मोनाली ठाकुर लाइव, एक एक्सक्विजिट इवनिंग, अ स्पेक्टेक्युलर कॉन्सर्ट, अक्टूबर 10th, 7:30 PM, प्लेनफील्ड हाई स्कूल ऑडिटोरियम। टिकट्स ऑन सुलेखा एंड mongobashi.sca.org। कॉन्टैक्ट 6503055624।
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलन।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

सितंबर तो खत्म हो चुका दोस्तों, और अब उन सबको ऑफिशियली उठाने का वक्त हो चुका है जो कहते थे वेक मी अप व्हेन सितंबर एंड्स। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, अक्टूबर 1st आज मतलब ग्रीन डे फैंस के लिए अलार्म बज चुका है। और मुझे ना ये लाइन हर सितंबर एकदम इंटरनेट ट्रेडिशन लगती थी कि मंथ स्टार्ट होता था कि यार मीम्स चालू हो जाते थे और एंड होते ही एक दूसरे को टैग करके बोलते थे कि उठो भाई अक्टूबर आ गया। और वैसे भी अक्टूबर का मूड सितंबर के मूड से बिल्कुल अलग होता है। थोड़ी ठंड, थोड़ा फेस्टिव एक्साइटमेंट, थोड़ा ईयर एंड का प्रेशर भी क्वाइटली एंट्री मार ही देता है। तो आज मुझे भी बताओ कि सितंबर का एक ऐसा काम क्या था जो आप अक्टूबर में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। नो जजमेंट, क्योंकि हम सबकी अपनी अपनी लिस्ट है। डीएम मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और जो अभी भी सितंबर मोड में है दोस्तों, वॉल्यूम बढ़ाओ, वेकअप कॉल आ रहा है विद द नेक्स्ट सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabara, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na virtuala burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा, जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना, वो रीप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए, चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए। ठीक है, आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
3: अरे बोल कौन रहा है
2: सर, ये वाला भेज दें बीप।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है
2: ये भेज दें सर बीप।
3: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
4: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
2: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजना सर, ये वाला बीप।
3: अरे बावले हो गए हो क्या
2: सर, एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, या और करोगे बीप।
3: अबे पागलों नहीं भेजना मुझे कुछ।
2: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं लास्ट।
3: ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
2: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
3: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
4: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
2: सर ये वाला ठीक है बीप।
3: अबे पागल, ले तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
4: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
2: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
3: ओ भाई मुझे नहीं भेजना, हाथ जुड़वा ले।
4: ओ भाई मुझे नहीं भेजना, हाथ जुड़वा ले।
2: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
3: अबे नहीं भेजना, एक बात समझ ले, तेरे में बुद्धि कम है।
4: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
2: सेंट सर, ये वाला गया सेंट। ठीक है सर।
3: अरे भाई किसको भेज दिया?
2: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
3: अबे ओ पागल, ये क्या कर रही है, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
8: Ne bete ke liye justice chahiye.
9: Mujhe justice nahi, badla chahiye.
7: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaideep Ahlawat and many others.
10: Is baar khatra kab, kaise aur kahan se aayega, batana mushkil hai.
7: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
10: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai, aakhri hissa baki hai.
7: Released by Zee Studios nationwide.
11: Sona खरीदने के सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आर के ज्वेल्स। आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
12: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
13: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
14: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
13: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
14: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
15: Inefficient,
16: very complex,
17: clumsy, oh,
18: confusion ही confusion।
14: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं। टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं। Yes, you heard that right, you can run your entire business

0: सेल्स मार्केटिंग से लेके कस्टमर सपोर्ट अकाउंटिंग ऑपरेशंस या एचआर काम अनेक सॉफ्टवेयर एक जोहो वन गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/1।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
3: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
6: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
6: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
8: Fall is finally falling, दोस्तों। शाम शानदार लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, न्यू जर्सी में फाइनली फॉल आ रहा है। वो हवा में हल्का हल्का क्रिस्प का फीलिंग, सुबह का थोड़ा कूल टेम्परेचर और ट्रीज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। एंड सडनली इवनिंग ड्राइव भी थोड़ी सिनेमेटिक लगने लगी है, क्योंकि मुझे ना फॉल की सबसे अच्छी बात ही ये लगती है कि सीजन आपको फोर्स नहीं करता कुछ करने के लिए, बस एनवायरमेंट खुद ही थोड़ा और ब्यूटिफुल हो जाता है, कॉफ़ी थोड़ी और बेटर लगने लगती है, वॉक थोड़ी और लॉन्गर हो जाती है, हुडी फाइनली जस्टिफाई होती है और रोड ट्रिप के बिना भी ट्रीज देखकर लगता है कि यार सीन तो सेट हो चुका है। मतलब मन बिल्कुल ऐसा करता है कि तुम ही देखो ना ये क्या हो गया। तो बताइए आपके लिए परफेक्ट फॉल मोमेंट क्या है, चाय, लॉन्ग ड्राइव, वॉक, पंपकिन स्पाइस या बस घर की विंडो से ट्रीज को देखना। DM me on Instagram RJ Mirchi Siddhi SIDDHI। और वेदर ने तो ऑलरेडी साउंड ट्रैक मांग ही लिया है, तो अगला गाना उसी फॉल ड्राइव मूड के नाम राइट हियर ऑन मिर्ची। It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the Naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
3: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज। इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
6: अक्टूबर 11th अग्रानी दुर्गा पूजा NJ। टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा। कॉल 9549188589।
7: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
8: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
9: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
8: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
9: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ, सिर्फ dialogue ही है।
13: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
14: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
15: अब मिर्ची खा।
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
18: शाम शानदार, लेट्स गो नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
19: इतने सालों में बॉलीवुड के भी कितने सारे नए रूप देखने मिले। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ब्लैक एंड व्हाइट से कलर, सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स, कैसेट से स्ट्रीमिंग, यार बॉलीवुड बदलता गया लेकिन कुछ क्लासिक्स की वैल्यू कभी कम नहीं हुई। और किचन में भी कुछ फ्लेवर्स बिल्कुल ही वैसे ही टाइमलेस है। एक जमाना था जब घर में मसाला हाथों से घिसे जाते थे, प्यार से कूटे जाते थे, धीरे धीरे पीसे जाते थे। धनिया, मिर्च और मसालों की खुशबू किचन से निकल के पूरे घर में फैल जाती थी और फिर वही चटनी टेबल पर आती और सिंपल सा समोसा, पकोड़ा, सैंडविच या पराठा सडनली कुछ और ही बन जाता था। लेकिन आज तो यार सिलबट्टा हर किचन में नहीं होगा, इतना टाइम भी शायद नहीं होगा, लेकिन वो चटकारा हमें अभी भी चाहिए। और उसी पुराने एहसास को आज के किचन तक लाते हैं दीप चटनी। आज ही नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर से ले आइए, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और क्लासिक्स की बात निकली है तो एक बॉलीवुड क्लासिक तो बनता है दोस्तों, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
4: Ye Mrs. Chopra na keep showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
5: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
4: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
6: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
11: Ab mirchi kha.
13: Radio Mirchi, it's hot.
14: Sham Shada, let's do not donkey, have a funky time.
15: वेल, कॉर्पोरेट दुनिया तो बोलेगी Q4, लेकिन मैं बोलूंगी फेस्टिव क्वार्टर। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और अक्टूबर स्टार्ट होते ही कैलेंडर ना सडनली काफी एक्साइटिंग हो जाता है। तब इंडियन साइड पर नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, भाई दूज, और यहाँ अमेरिका में हैलोवीन, थैंक्सगिविंग, क्रिसमस, न्यू ईयर। मतलब यार, अगले 3 महीने डेकोरेशन उतरने से पहले दूसरा डेकोरेशन रेडी रखना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा काम है। लेकिन मुझे ना ये Q4 का यही मूड सबसे ज्यादा पसंद है। मतलब एक फेस्टिवल खत्म होता नहीं कि दूसरे की शॉपिंग, फूड, आउटफिट्स, पार्टी और फैमिली प्लान स्टार्ट हो जाते हैं। और NRI लाइफ में तो यही तो बोनस होता है, दो कल्चर्स के फेस्टिवल एक ही कैलेंडर में। मतलब डबल धमाका, डबल मिठाई, डबल कैलोरीज भी। और ऑडिट जनवरी में करेंगे। तो बताइए Q4 में आप सबसे ज्यादा किस फेस्टिवल का वेट कर रहे हो? DM ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi. और फेस्टिव क्वार्टर ऑफिशियली ओपन तो हो चुका है, तो ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

अक्टूबर सुनते ही ना मुझे स्कूल की एक बात याद आती थी कि तब स्कूल का कैलेंडर सडनली कितना इंटरेस्टिंग हो जाता था। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज थ्रो बैक थर्सडे है। तो यार बचपन के अक्टूबर की याद आ रही है, मतलब तब जब यार सिर्फ मंथ चेंज नहीं होता था, स्कूल में दशहरा दिवाली की छुट्टियों की बातें शुरू हो जाती थी, नोटबुक्स में कितने पेजेस बचे हैं उसका कैलकुलेशन होता था, घर में साफ सफाई तो शुरू होती थी और मम्मी वो क्लासिक अनाउंसमेंट कर ही देती थी कि इस बार दिवाली में क्या लेना है अभी से डिसाइड कर लो, और फिर स्कूल के फ्रेंड्स के साथ डिस्कशंस होता था, कौन कहाँ जा रहा है इसका हिसाब रखा जाता था, किसने नए कपड़े लिए, वेकेशन होमवर्क कितना मिला। मतलब तब ना हम कैलेंडर एक्चुअली देखते ही नहीं थे, स्कूल की छुट्टियां ही बता देती थी कि फेस्टिवल कितना करीब है। लेकिन आज अक्टूबर के कैलेंडर में मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स से भले ही भरा हो, लेकिन वो स्कूल वाला अक्टूबर याद करो ना तो एक अलग ही एक्साइटमेंट वापस आ जाती है। तो चलिए इस थ्रोबैक थर्सडे मुझे बताइए कि स्कूल के फेस्टिवल हॉलीडेज में आपकी सबसे फेवरेट मेमोरी क्या है। DM ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए थोड़ी देर के लिए कैलेंडर को वो बचपन वाला बना देते हैं एक ऐसे बॉलीवुड गाने के साथ जो स्कूल डेज की प्लेलिस्ट खोल दे। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Murga, murga.
1: La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: हेलो,
3: हेलो डॉक्टर सविता से बात कर रही है।
2: तो सविता बोल रही हूँ।
3: डॉक्टर ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता, तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
2: क्या परेशानी है?
3: न एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता है।
2: तो वो तो भरता ही है।
3: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
2: अच्छा,
3: ये बुढ़ापे में हो गया। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
2: हाँ हाँ।
3: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
2: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है?
3: प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
2: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
3: नहीं,
2: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
3: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
2: अच्छा।
3: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
2: अच्छा, लेकिन मैं समझ रही हूँ।
3: हाँ, क्या समझ
2: रही हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से? मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
3: डॉक्टर सविता।
2: हाँ जी,
4: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आज तो मेरे ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही हूँ। देखा, मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा।
2: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
4: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
2: कुकड़ू को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
9: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
8: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
10: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
11: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
12: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम। साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन। विजिट द craftyhands.com और कॉल 732-397-0057।
13: Nine nights, one divine spirit.
14: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscat Way.
13: Join daily Garba, October 11th to 19th at 7 p.m.
14: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th and Sharat Purnima Garba on the 25th.
13: Gather with family and experience the divinity. Visit gayatricenter.org.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural

0: Natural diamonds, best quality at the lowest prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
2: Hidda!
3: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
4: Sneakers, Kanjivaram Sari, or Vahi electrifying vibe. Experience the Queen of Pop, Usha Uthup, live and up close. October 11, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.
5: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
6: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
5: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
6: Plus, grooms ke liye royal sherwani.
5: Miss India, आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, Islin.
7: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ, सिर्फ डायलॉग ही है.
8: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में.
7: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
9: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
10: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा.
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
12: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
13: कभी कभी ना हम किसी चीज को मेरे तो ये बजट के बाहर है ऐसा कहकर ही शुरू होने से पहले ही फुल स्टॉप लगा देते हैं. शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि. और फिर चाहे वेकेशन हो, नई कार हो या लाइफ का कोई बड़ा माइलस्टोन, पहले बड़ा नंबर दिखता है और हम कहते हैं कि यार रहने दो, बाद में देख लेंगे. और दोस्तों, घर खरीदने के ड्रीम के साथ भी ना कुछ ऐसा ही होता है. काफ़ी सारे लोग डाउन पेमेंट का बड़ा नंबर देखकर पहले ही रुक जाते हैं, लेकिन पिक्चर में लो डाउन पेमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं और ऐसे में मॉर्गेज इंश्योरेंस जैसे ऑप्शंस किस तरह से इंक्लूड होते हैं, इन्हें समझना भी ज़रूरी होता है. और इसीलिए इन्हीं सारे बातों के बारे में हमें और भी बताएंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज. ओवर टू यू बीश.
14: जय सायराम मिर्ची लिसनर्स, योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज. Turned out to be a nice day and good news finally. The mortgage rates are getting better. Buying your first home is exciting, but it can also be overwhelming. One of the biggest mistakes I see in waiting too long to talk with a mortgage professional. Many people spend months looking at homes online without knowing what they can actually afford. A simple pre-approval gives you a realistic budget and helps you shop with confidence. Another common mistake is making big financial changes after applying for a mortgage. Like buying a new car, opening a credit card, or financing furniture before your loan closes can affect your credit profile and even your loan approval. It's always a good idea to check with your loan officer before making any major financial decisions. So friends, buying your dream home, advice is free. Call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 7%. 20-year fixed mortgage rate, 6.875%. 15-year fixed mortgage rate, 6.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. It is lionmtg.com. Don't let mortgage meets hold you back. You don't always need a 20% down payment. And you don't need perfect credit to qualify for a loan. There are many loan programs designed to help the first-time home buyers achieve home ownership. So friends, once again, buying your dream home or refinancing, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
15: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
3: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
6: Oh no!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
8: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
9: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
10: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
8: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
11: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
8: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
11: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
8: Releasing nationwide by Zee Studios.
12: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
13: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
14: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
15: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
14: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
16: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
17: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
18: अक्टूबर की इवनिंग्स और एक रिमोट, बचपन में इतनी सी चीज भी ना पूरा फैमिली पॉलिटिक्स करा देती थी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी और आज थ्रोबैक थर्सडे में याद आता है कि जब घर में एक ही टीवी होता था ना और एंटरटेनमेंट इंडिविजुअल नहीं कलेक्टिव डिसीजन होता था, तब क्या हालत होती थी। क्योंकि पापा को तो न्यूज देखनी थी, मम्मी को अपनी रोने वाली सीरियल देखनी थी और बच्चों को मूवी चाहिए होती थी या फिर कार्टून चाहिए होता था, और रिमोट जिसने पहले पकड़ा उस दिन टीवी का टेम्पररी CEO वही होता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि किसी को कुछ और देखना भी हो ना तो भी नहीं, पूरे घर में अक्सर एक ही स्क्रीन के सामने बैठा जाता था और सबको वही देखना पड़ता था जो CEO ने डिसाइड किया है। तो आज तो हर हाथ में अपना अपना अलग अलग स्क्रीन है, अपना अलग एल्गोरिदम है, अपनी वॉचलिस्ट है, लेकिन वो कि आज टीवी पे क्या आ रहा है वाली एक्साइटमेंट ही अलग थी। तो चलिए इस थ्रोबैक थर्सडे आप भी बताइए कि आपके घर का रिमोट कंट्रोल किंग या क्वीन कौन था। टेल मी ऑन इंस्टेड RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार मेरे घर का जो रिमोट कंट्रोल क्वीन थी वो थी मेरी दादी, और दादी को हमेशा सत्संग देखना था तो इसलिए मेरे विचार बहुत ही शुद्ध है और उससे भी शुद्ध मेरे गाने हैं, तो वो बजाऊंगी आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज। इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
3: अक्टूबर 11th अग्रणी दुर्गा पूजा NJ। टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा। कॉल 9549188589।
2: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
4: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
10: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
11: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
10: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है।
10: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
14: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और पिक्चर छोड़ो, अब ऑडियंस कह रही है कि भाई मेरे पास तो 5 मिनट है, उतने में जो दिखाना है दिखा दो। और एंटरटेनमेंट की दुनिया में यही एक इंटरेस्टिंग चेंज हो रहा है, क्योंकि एक टाइम था जब हम 3 घंटे की बॉलीवुड पिक्चर देखते थे, फिर आया OTT और हमने कहा कि चलो 8 एपिसोड्स बिंज कर लेते हैं। फिर रील्स ने हमें 30 सेकेंड में स्टोरी दिखाने की आदत लगा दी, और अब लग गई तो लग गई है आदत। और अब आ चुका है माइक्रो ड्रामा, मतलब छोटे छोटे एपिसोडिक शोज जहां एपिसोड्स को सिर्फ कुछ मिनट्स मिलते हैं। मेट्रो का वेट कर रहे हो, कॉफी बना रहे हो, लंच ब्रेक हो, 5 मिनट मिले तो निकालो फोन और कहानी आगे बढ़ाओ। और मजे की बात तो ये है कि इंडिया के टॉप 12 फ्री एंटरटेनमेंट एप्स में अब 6 माइक्रो ड्रामा एप्स भी है। यानी ये जो शॉर्ट फॉर्म स्टोरीज है ना, अब नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे ट्रेडिशनल OTTs को जोरदार टक्कर देने वाले हैं। और मुझे सबसे फनी बात तो इसका इवोल्यूशन लगता है, मतलब 3 घंटे की पिक्चर से 8 आवर का बिंज, और अब 5 मिनट ड्रामा। यानी अटेंशन स्पैन छोटा हो गया है दोस्तों, लेकिन ड्रामा का एपेटाइट वो बिल्कुल फुल साइज है। तो आप भी बताओ कि आपको प्रॉपर 2-3 घंटे की पिक्चर चाहिए बिंज वर्दी सीरीज, या 5 मिनट में प्यार धोखा बदला दी एंड भी चलेगा। DM ऑन इंस्टाग्राम @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और अब शॉर्ट फॉर्म की बातें बहुत हो गई, चलिए अगला गाना पूरा का पूरा सुनते हैं। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज का हंगामा आ रहा है एक ड्रीमी सॉन्ग के पीछे से। जी हाँ, पहला नशा। अब ये गाना आपने पर्दे पे तो देखा ही होगा, तो जब हम ये गाना पर्दे पे देखते हैं ना, तो यार लगता है कि एकदम स्लो मो में चल रहा हो। मतलब आमिर खान और आयशा झुलका के बीच वो ड्रीमी वॉक, एकदम फर्स्ट लव वाइब। पर पर्दे के पीछे की बात तो ये है कि उस वक्त बॉलीवुड में स्लो मो कैमरा टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो डायरेक्टर मंसूर खान ने जुगाड़ निकाला। उन्होंने कहा कि एक्टर्स को ना अब लिटरली स्लो मो में रन और मूव करना है, और बाद में कैमरा स्पीड और एडिटिंग से वो स्लोमो वाला इफेक्ट क्रिएट किया गया। मतलब रोमांस स्क्रीन पे तो बिल्कुल स्मूथ था और पर्दे के पीछे सब बस धीरे धीरे चल रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में भी ना ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। वैसे आप भी बताना कि पहला नशा सुन के आपको किसकी याद आती है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो
1: मिस्टर कुमार.
0: या
1: हेलो सर, हाउ आर यू?
0: फाइन फाइन फाइन.
1: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में. मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं.
0: नहीं, आप बताओ.
1: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा.
0: दिस इज रिगार्डिंग व्हाट?
1: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए. मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए.
0: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार.
1: सैटरडे चार बजे सर. थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
0: हाँ
1: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर. सर कितने बजे बताया आपने? एग्जैक्ट टाइम बता दिए मेरे को.
0: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा.
1: सैटरडे 4 बजे सर, वो सैटरडे 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना. तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर. सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर.
0: हाँ मिलते हैं.
1: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे. सर कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज.
0: देखो यार, मैं मंडे ट्यूसडे मैं मुंबई जा रहा हूँ. ट्यूसडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे.
1: मैं ट्यूसडे किसी कितने बजे सर? ट्यूसडे आप मेरे को बताइए.
0: 7 बजे
1: सर. मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर. आप 7 बजे के अलावा कभी भी.
0: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को.
1: सर संडे कितने बजे?
0: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे.
1: सर संडे 3 बजे दिन में सर. मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी. संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे. तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा. तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो.
0: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर बताइए मुझे.
1: मैं पहले अपना ही निकाल
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: ये मोह मोह के धागे.
6: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती हैं.
7: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है. BBSCA presents Monali Thakur Live, एक exquisite evening, a spectacular concert. October 10th, 7:30 PM, Plainfield High School Auditorium. Tickets on Sulekha and mongobashi.sca.org. Contact 650-305-5624.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
8: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती. वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
10: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
11: This October, witness the peak of entertainment. Festival of Lights, a premier community celebration with artists like Jayashree, Sparsh Shah, Nini Iris, and dance academies like Bolly Moves, Shivalik, Tara Art Academy. Enjoy food, garba, and one-of-a-kind fireworks on October 3rd at Kennedy Park, Sayreville, from 3 to 9 PM. Entry and parking is free.
12: Make your child's party unforgettable this year. Come get your crafty hands-on at our creative studio in Marlborough. 26 plus DIY projects, from slime to crafts, all designed around your child's age and theme. And of course, pizza, popcorn and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
13: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best

0: quality at the lowest prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
6: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
7: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमरखोल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट my3usa.org।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
11: शाम शारदा, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
12: शाम शारदा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और स्वागत है आपका थ्रोबैक थर्सडे पे। वैसे दोस्तों इतनी सारी बातें हम करते हैं थ्रोबैक थर्सडे पर, फिर चाहे पुराने टाइम में जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे या जो पुराने गाने सुनते थे, लेकिन एक चीज हमारे जो गोल्ड डिकोडर सीरीज में बात होती है वो है कि जब हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि यार 20 साल पहले या 10 साल पहले या 5 साल पहले गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो आज कहाँ रेट होते। तो यही जो सारी रियलिटी स्टैट्स है ये देने आते हैं हर थर्सडे को हमारे बॉबी जी फ्रॉम राज ज्वेल्स। तो चलिए बॉबी जी का स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि बॉबी जी 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो क्या होता। वेलकम बॉबी जी।
13: देखिए सिद्धि जी नमस्कार, हैप्पी इवनिंग टू एवरीवन। और मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, जैसे हर पुरानी चीज जो बहुत प्यारी लगती है, जैसे पुराने गाने है ना, जितने पुराने होते जाए उतने प्यारे लगते हैं, इसी तरह से जिन्होंने पुराना सोना ले लिया उनको वाकई बहुत पुराना लगता होगा सिद्धि जी।
12: बिल्कुल,
13: बहुत प्यारा लगता होगा। सॉरी, क्योंकि क्या है, आज जैसे गोल्ड 4175 $4,175 पर ट्रायंस चल रहा है, अगर साल की शुरुआत से बात की जाए तो गोल्ड $5,600 पर ट्रायंस ट्रेड कर रहा था, आज भी बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है 4175 पर ट्रायंस। आज भी जो ले लेंगे ना सिद्धि जी, वो आने वाले 5 साल बाद फिर उसी पुराने गानों की तरह बहुत प्यारे लगेंगे कि ये सोने का भाव 4,175 में लिया था, अरे बाप रे आज देखो गोल्ड कहाँ पहुंच गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आज ही राजवर्स पे धनतेरस दिवाली पुष्य नक्षत्र सेलिब्रेशंस के लिए हम तैयार हैं और हम चाहते हैं कि 0% इंटरेस्ट पे 9 मंथ की फाइनेंसिंग के लिए गोल्ड का प्राइस अब लॉक करके आप ज्वेलरी आज अपने साथ घर लेके जाएं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में राजवर्स की टीम को पैसे दें। तो आ जाइए मिलके सेलिब्रेट करते हैं राज ज्वेल्स के साथ लिटिल इंडिया ओपी रोड पर।
12: क्या बात है। और बॉबी जी मैंने सुना है कि स्पेशली वो सारे लोग जो पुराने गाने, पुराने यादों, और नॉट जस्ट पुराने गाने, इन जनरल जो एक जमाना था जब सब एक साथ मिलते थे, एक बहुत ही प्यारा जैमिंग होता था, बॉलीवुड नाइट्स होती थी, वो कल्चर आप वापस लेकर आ रहे हो, तो प्लीज हमारे जो लिसनर्स है, जो म्यूजिक के इतने सारे प्रेमी हैं, जो सिंगर्स है, उनके लिए बताइए कि क्या खास हो रहा है राज ज्वेल्स में।
13: देखिए धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, वो गाना सुना है आपने?
12: बिल्कुल,
13: आपको पहले ही खबर लग गई हमसे। सो देखिए जैमिंग का इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंड है और राज ज्वेल्स ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स के लिए, कम्युनिटी के लिए जैमिंग के लिए तैयार है। बॉलीवुड जैमिंग ये फर्स्ट इन काइंड है लिटिल इंडिया ओपी रोड पर राज ज्वेल्स के साथ। अक्टूबर 10th को आप जैमिंग, बॉलीवुड जैमिंग के लिए आ जाइए। इट्स ए फ्री इवेंट, एनीबडी कैन कम इन। द मोर देखिए गाने जो एक ऐसे हैं सिद्धि जी, हर एज को, हर कम्युनिटी को, का कहीं से हो, पंजाब से हो, साउथ से हो, आपको बॉलीवुड के जो गाने हैं ना वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सबके फेवरेट और दिल को टच करते हैं। और स्पेशली जब आप सबके साथ मिलके गाएं, जो जैमिंग जो नया एक ट्रेंड है, हमने बहुत भक्ति जैमिंग देखी है लेकिन हमने स्टार्ट किया है बॉलीवुड जैमिंग के साथ, जिसमें हम सब मिलके अपने दिल से अपने गानों को फेवरेट, अपने सिंगर्स के साथ गाएंगे। सो हमने एक छोटा सा स्मॉल इवेंट सेटअप किया है जिसके अंदर अक्टूबर 10th को राजोल्स के पार्किंग लॉट में 5 to 8 बॉलीवुड जैमिंग होगी। आपके फेवरेट सिंगर्स आपके साथ गाना गाएंगे और आप उनके साथ जैम करेंगे। सो आ जाइए, राजोल्स आपके साथ इस फेस्टिविटीज को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है।
12: क्या बात है
13: जी, आप भी इन्वाइटेड है।
12: थैंक यू बॉबी जी। देखिए जहां म्यूजिक होता है वहां हम पहुंच ही जाते हैं, तो मैं तो जाने वाली हूँ दोस्तों, लेकिन आप भी जरूर मिलने आ जाना। वही पुरानी यादें, वही पुराना जो म्यूजिक का फील है, लाइव म्यूजिक का जो फील है, उसे अगर लाइव एक्सपीरियंस करना चाहते हो, लाइव जैमिंग करना चाहते हो, तो पहुंच जाना अक्टूबर 10th को राज जूल्स के पार्किंग लॉट पर, क्योंकि वहां पर हम सब दोस्त मिलकर गाने बजाने वाले हैं और गानों से बड़ा प्यारा इस दुनिया में कुछ होता नहीं है। तो चलिए सुनते हैं ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
3: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
2: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
7: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jaano.
8: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
9: Ne beti ke liye justice chahiye.
10: Mujhe justice nahi, badla chahiye.
8: Drishyam The Conclusion. Starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaideep Ahlawat and many others.
11: Is baar khatra kab, kaise aur kahan se aayega, batana mushkil hai.
8: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion. In cinema 2nd October.
12: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
8: Released by Zee Studios nationwide.
13: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
14: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़िलिन, न्यू जर्सी।
15: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
16: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
15: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
16: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
15: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
17: Beta, shaadi next week hai. Aur tumhara abhi paise bhejta hu, sirf dialogue hi hai.
18: अरे माँ, अभी भेजता हूँ। टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
17: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
19: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
20: तेरा क्या होगा कालिया?
21: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
20: अब मिर्ची खा।
22: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
23: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
24: वक्त बीत जाता है लेकिन कुछ खास गाने ऐसे बन जाते हैं जो दिल में घर कर जाते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और 2005 में रिलीज हुई एल्बम बंटी और बबली, यानी 20 साल हो चुके इस एल्बम को, लेकिन आज भी उसके गाने उतने ही रेलिवेंट है। तो आज हमने सोचा कि आज की शाम में ऐसे ही टाइमलेस गानों के बारे में, जो कि बंटी और बबली के एल्बम में है, उनके बारे में बात की जाए, उनके बारे में कुछ खास किस्से शेयर की जाए। और आज का जो पहला गाना है फ्रॉम दिस एल्बम इज ऑब्वियसली वन ऑफ आवर फेवरेट सॉन्ग्स, कजरा रे। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन एक फ्रेम में एक साथ इसी गाने में नजर आए थे। और सिर्फ कोई ऐसा वैसा गाना नहीं था, एक आइटम सॉन्ग था, तो काफ़ी

0: हिचकिचाहट थी अमिताभ बच्चन के लिए भी, ऐश्वर्या राय के लिए भी, कि शायद उनसे ये गाना नहीं हो पाएगा। लेकिन वैभवी मर्चेंट ने, जो कि इस गाने की कोरियोग्राफर रही है, उन्होंने उनको भरोसा दिलाया कि नहीं यार, ये गाना आप सब लोग बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, इस गाने का सेटअप भी इतने अच्छे से किया जाएगा और ये गाना आइकॉनिक बनेगा, ये विश्वास वैभवी जी को था। इतना ही नहीं, ये वो पहला गाना था जो गुलजार साहब ने एज अ फर्स्ट आइटम सॉन्ग लिखा था। और वैसे तो गुलजार साहब काफ़ी सारे जो इंस्पिरेशन होती है उनके गानों के लिए, वो काफ़ी अलग अलग चीज़ों से लेते हैं, लेकिन इस गाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया था कि कोई भी ऐसे डीप चीज़ से इंस्पिरेशन नहीं ली जा सकती। तो इन्होंने जो इस गाने के लिए इंस्पिरेशन ली थी वो थी नॉर्थ इंडियन जो ट्रक्स होते हैं उसके पीछे जो मैसेजेस लिखे होते हैं उससे, जैसे कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, वैसे ही इस गाने में एक लाइन है कि जालिम नज़र हटा ले। और ऐसे ही ये गाना बना वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स रिटन बाय गुलजार साहब। तो जी हाँ, आज सुनते हैं कजरा रे, बंटी और बबली के एल्बम से, जो कि 2005 में रिलीज हुई थी, एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स शंकर महादेवन की आवाज़ में। और वैसे तो कजरा रे के काफ़ी सारे सिंगर्स रहे हैं, मतलब जावेद अली, शंकर महादेवन, अलीशा शिनाई, और लेकिन ऑफकोर्स उसका जो एंड पार्ट है जिसमें वो गाते हैं कि तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में, छोड़ा आए कहानी दिल्ली में, तो जी हाँ, ये जो पार्ट है वो मेरा भी फेवरेट पार्ट है। आई होप आपको भी ये गाना पसंद हो, और आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट टाइमलेस एल्बम, विच इज़ दैट टाइमलेस सॉन्ग जो आप हमेशा सुनना पसंद करते हो। टेल मी ऑन RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल आज बंटी और बबली के गानों के बारे में बात होगी, तो विच मीन्स कि ये जो कजरारे गाना है ये हमारे लिस्ट का पहला गाना है। तो और भी गाने आने वाले हैं, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
0: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम, साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन। विजिट द craftyhands.com और कॉल 732-397-0057। अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
10: Listener mein, back to back gana sunega.
11: Back to back gana sunega.
10: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
12: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
13: बॉलीवुड में हीरो सिर्फ प्यार ही नहीं निभाता, जिम्मेदारी भी निभाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और चाहे कभी खुशी कभी गम का राहुल हो, स्वदेश का मोहन, यार असली हीरो तो वही होता है जो अपनों के लिए हमेशा खड़ा रहे, कभी घर लौटकर तो कभी दूर रहकर भी हर जरूरत का ख्याल रख के। क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फोन कॉल से ही नहीं चलती, कभी कभी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सपोर्ट की भी जरूरत होती है। और उस सपोर्ट का सबसे आसान तरीका होता है घर पर पैसे जल्दी और बिना टेंशन के पहुंच जाना, और इसीलिए टैप टैप सेंड, यानी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में भेजिए इंस्टेंट मनी ट्रांसफर्स, ग्रेट एक्सचेंज रेट और जीरो ट्रांसफर्स फी के साथ, यानी नो वेट एंड नो हैसल। डाउनलोड द टैप टैप सेंड ऐप टुडे, सेंड मोर एंड स्पेंड लेस। और अब एक गाना जो अपनों की याद हमेशा दिला ही देता है, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: की टाइम।
1: वक्त बीत जाता है लेकिन कुछ ऐसे खास गाने बन जाते हैं जो दिल में घर कर जाते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और हमारी बातें हो रही है कि यार बंटी और बबली के एल्बम को, जो कि रिलीज हो चुकी थी 2005 में, इस एल्बम को हो चुके हैं 20 साल, लेकिन आज भी उसके गाने उतने ही पॉपुलर है, उतने ही अमेजिंग है। और कजरारे के बारे में तो हमने बात की, लेकिन वन ऑफ द अदर सॉन्ग्स दैट आई एब्सोल्युटली लव इज धड़क धड़क। जी हाँ, ये गाना गाया है उदित नारायण जी ने और सुनिधि चौहान ने, कंपोज्ड बाय नन अदर देन म्यूजिक मेस्ट्रो शंकर महादेवन। और ये गाना जब बन रहा था तब इसकी जो फिल्मिंग होने वाली थी, तब डिसाइडेड था कि ये गाना बनते हुए इसकी फिल्मिंग जो रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन के जो होम टाउन्स है, रिस्पेक्टिव होम टाउन, जो कि छोटे शहर है, वहाँ पर ही होनी चाहिए, क्योंकि यार तब लोगों को लगता था कि बड़े शहरों वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही कूल होते हैं। एंड ये पूरा नैरेटिव इन्होंने डिसाइड किया था कि चेंज करना है, नहीं, क्योंकि छोटे शहरों से भी जो छोटी छोटी बातें होती है, जो छोटा छोटा फैशन सेंस होता है, वो अमेजिंग होता है। और ये जो गाना बनाया गया था वो लिखा भी इसी तरीके के लिए गया था, इसी सीक्वेंस के लिए गया था कि छोटे छोटे शहरों से, आधी भोल दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। तो जी हाँ, ये बहुत ही प्यारा सा एक ऐसा गाना बनाया गया था जिससे हमें हमारे उन छोटे छोटे शहरों की याद आती है जहाँ से हम आए हैं। तो इस गाने की ये खासियत तो थी ही, बट इतना अमेजिंगली ये गाना नॉट जस्ट गाया गया है बल्कि फिल्म भी किया गया है। तो इसी याद में आज इस गाने को प्ले करते हैं। वैसे बंटी और बबली एक ऐसा आइकॉनिक एल्बम है जो हमारे लिए काफ़ी स्पेशल है इवन आफ्टर 20 ईयर्स। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जो आपको बहुत पसंद है, जिसको 20-25 साल हो चुके हैं बट आज भी रेलिवेंट है। टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और बंटी और बबली का और एक गाना जो मेरा फेवरेट है वो मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूं, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Biscuit Mirchi.
1: Discabana, buscabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रीप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए। ठीक है, आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
3: बीप। अरे बोल कौन रहा है?
5: अरे बोल कौन रहा है
4: सर, ये वाला भेजने बीप।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
5: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
4: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेजने सर बीप।
3: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
5: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
4: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजना सर, ये वाला बीप।
3: अरे बावले हो गए हो क्या?
5: अरे बावले हो गए हो क्या?
4: सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, ये और करोगे बीप।
3: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
5: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
4: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं लास्ट।
3: ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
5: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
4: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
3: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
5: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
4: सर ये वाला ठीक है बीप।
3: अबे पागल, ले तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
5: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
4: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
3: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
5: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
4: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
3: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
5: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
4: सेंट सर, ये वाला गया सेंट। ठीक है सर।
3: अरे भाई किसको भेज दिया?
4: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
3: अबे ओ पागल वाले, ये क्या कर दिया, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
10: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
9: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
11: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
12: दिस अक्टूबर विटनेस द पीक ऑफ एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, अ प्रीमियर कम्युनिटी सेलिब्रेशन विद आर्टिस्ट्स लाइक जयश्री, स्पर्श शाह, नीनी आयरिस एंड डांस अकेडमीज लाइक बॉली मूव्स, शिवालिक, तारा आर्ट अकेडमी। एंजॉय फूड, गरबा एंड वन ऑफ अ काइंड फायरवर्क्स ऑन अक्टूबर 3rd एट कैनेडी पार्क, सेयरविल, फ्रॉम 3 to 9 PM। एंट्री एंड पार्किंग इज फ्री।
13: नवरात एक स्पिरिट
14: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथी लावी रहा छे पिस्का टवे मा
13: रमो गरबा डेली 11 to 19 October सांचे 7 o'clock थी।
14: तारीख 18 रोज 8 यज्ञ, 19 9 यज्ञ अने 25 शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी। विजिट gayatricenter.org टुडे।
15: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
16: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
15: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
16: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
17: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
18: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
17: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

वक्त बीत जाता है लेकिन कुछ खास गाने ऐसे बन जाते हैं जो दिल में घर कर जाते हैं। शाम शादा लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज बातें हो रही है कुछ टाइमलेस गानों के बारे में। और 2005 में यानी 20 साल पहले रिलीज हुई एल्बम बंटी और बबली के यार सारे गाने अमेजिंग हैं। मतलब 20 साल हो चुके हैं लेकिन इस एल्बम के तो एक से बढ़कर एक गाने हैं। और कजरारे के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, धड़क धड़क इस गाने के बारे में हम बात कर चुके हैं। द थर्ड सॉन्ग इन दिस एल्बम विच इज़ रियली ब्यूटिफुल इज छुप छुप के, जिसे गाया गया है सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने। वैसे यार इस गाने की एक खास बात है कि एक रोमांटिक सॉन्ग तो है ही, एक बहुत ही ब्यूटिफुली कंपोज सॉन्ग है, लेकिन इस गाने को जब रिकॉर्ड किया गया था तब शंकर महादेवन ने इसकी रिकॉर्डिंग कम से कम 3 बार रुकाई थी बीच में, क्योंकि यार तब वो गाना इतना ब्यूटिफुली रिकॉर्ड हो रहा था कि गाने के बीच में ही उनको गूज बम्स आ गए और उनका जो पार्ट था, उनका जो कंपोजिशन था, बीच में ही समवेयर वो अमिस हो गया एंड उस वजह से उनको ये गाना 3 बार ऑलमोस्ट रोकना पड़ा। तो जी हाँ, इतना ब्यूटिफुल कंपोजिशन है छुप छुप के फ्रॉम बंटी और बबली का एल्बम विच वॉज मेड इन 2005। यार 20 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी ये गाना उतना ही ब्यूटिफुल है, उतना ही टाइमलेस है और उतना ही हमारे दिल में घर कर चुका है। वैसे ऐसा कोई और गाना है, ऐसा कोई और एल्बम है तो आप अपने सॉन्ग रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो, टाइमलेस सॉन्ग जो आपके दिल में आज भी है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए बंटी और बबली का छुप छुप के, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हुई।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
4: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
2: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 732-366-6777।
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Tera kya hoga, Kalia?
11: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
10: Ab mirchi kha.
12: Radio Mirchi, it's hot.
13: Radio Mirchi, it's on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
14: Sham Sharda, let's do Nautanki, have a funky time.
15: एक बात तो माननी पड़ेगी कि न्यू जर्सी की समर ना घर में बैठने के लिए बनी ही नहीं है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है, फिर चाहे फार्मर्स मार्केट हो, फूड फेस्टिवल्स हो, बीच ट्रिप्स, इवनिंग वॉक्स, कॉन्सर्ट्स, काउंटी फेयर्स, या बस मौसम को देखते रहना। वैसे यार, आजकल ना मन करता है कि घर थोड़ा लेट ही चलता है, क्योंकि समर की सबसे प्यारी बात ही ये होती है कि प्लान्स ना बहुत बड़े होने की ज़रूरत नहीं। कभी एक आइसक्रीम, कभी एक पार्क की वॉक, कभी बस कार की विंडोज डाउन करके बॉलीवुड सुनते हुए ड्राइव, और शाम यादगार बन ही जाती है। तो इस हफ्ते न्यू जर्सी चैलेंज ये है कि एक नई जगह ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, और अगर आपके पास कोई हिडन जेम हो, फिर चाहे वो कॉफ़ी शॉप, पार्क या सनसेट स्पॉट हो, तो मुझे ज़रूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और चलिए न्यू जर्सी की इस खूबसूरत समर इवनिंग को बॉलीवुड के सुरों से और भी रंगीन बनाते हैं विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: ये मोह मोह के धागे।
7: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती हैं।
0: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है। BBSCA presents मोनाली ठाकुर लाइव, एक एक्सक्विजिट इवनिंग, अ स्पेक्टेकुलर कॉन्सर्ट, अक्टूबर 10th 7:30 PM, प्लेनफील्ड हाई स्कूल ऑडिटोरियम। टिकट्स ऑन सुलेखा एंड mongobashi.sca.org। कॉन्टैक्ट 6503055624।
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels। RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
0: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
11: शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। एंड चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा, बाय बाय, सायोनारा टू यू। लेकिन ना आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।